नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ आपकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ वागड रेडियो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 17 अप्रैल 2026 वार शुक्रवार का दिन है, साथ ही हम देख पा रहे हैं कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम रुख करेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। अगला कार्यक्रम होगा इसी कड़ी में सच्चा बचपन, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारी रेडियो साथी कशिश पारेशर, इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, इसी के बाद हम रूबरू होंगे कार्यक्रम आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारी रेडियो साथी कशिश पारेशर के साथ में। फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे अधिकार कानून नियमों से जुड़ा सच्चा स्वराज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और अंजलि पारेशर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम रुख करेंगे हमारी परंपराओं लोक राजस्थानी गीतों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम लोक संगीत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर राजस्थानी गीतों के साथ में। श्रोता साथियों, फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मनीषा पटेल यानी कि मेरे साथ में। मेरे साथ होगी हमारी रेडियो साथी कशिश पारेशर। आगे बढ़ते हुए हम रुख करेंगे कार्यक्रम समस्या समाधान की ओर, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। श्रोता साथियों, फिर हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक सुबह 10 बजे। फिर इसी क्रम में रूबरू करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों आप अपनी फरमाइश के गीतों को सुन सकते हैं 11 से 1 बजे तक वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और फरमाइश के गीतों को दे सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर लिखिए, हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, यह तो थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज की सभा में सबसे पहले कार्यक्रम आराधना से।

0: ये सदा यही कहते आए कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र? अपने वो होते हैं जो हमें सद्कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दें, और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश, धर्म की हानि, वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं।
1: आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े, परंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना उन्नति के लिए आवश्यक है। आप माता पिता हैं ना, यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी, मार्ग के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेगी? इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक रहती है।
2: आप सुन रहे हैं आराधना।

आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने आपने में देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: साथियों, रंग बिरंगी थाली सजाएं, बच्चों को हम स्वस्थ बनाएं। हरी सब्जी, पीला फल, दूध दही से मिले बल, स्थानीय भोजन अपनाएं, सेहत का दीप जलाएं। रंग बिरंगी थाली में स्वास्थ्य छिपा है प्यारी थाली में। नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम में जब भी हम हाजिर होते हैं तो एक प्यारा सा विषय हमारे साथ जुड़ता है। आज का हमारा विषय है बहुत खास, क्योंकि बात है हमारे बच्चों की सेहत की। हम अक्सर कहते हैं कि बच्चों को अच्छा खाना खिलाना चाहिए, पौष्टिक खाना देना चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बच्चों की थाली जितनी रंग बिरंगी होगी उसमें पोषण की उतनी ही अलग अलग संभावनाएं छिपी होंगी। जी हाँ, लाल टमाटर, हरी पालक, पीली दाल, नारंगी गाजर, मौसमी फल, अनाज, दालें, दूध, दही हमारे पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं। ये सब मिलकर बच्चे के विकास की मजबूत नींव बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है साथियों कि क्या हर रंग का मतलब अलग पोषण है? क्या महंगे फल ही ज्यादा पौष्टिक होते हैं, या हमारे स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थ बच्चों के लिए फायदेमंद है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए चलिए सुनते हैं दो महिलाओं की बातचीत। दोनों अपने बच्चों की थाली को लेकर थोड़ी उलझन में हैं। शायद उनके सवाल आपके घर से भी जुड़े हों, तो आइए सुनते हैं आज का हमारा छोटा सा संवाद।
1: स्कूल के बाहर हल्की चहल पहल। अरे सुनीता, जरा रुकना, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती थी।
2: हाँ हाँ कमला, पूछो, क्या हुआ है?
1: आज स्कूल में बच्चों की थाली के बारे में कुछ बताया गया, मैं तो सोच में पड़ गई।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे क्या बताऊं, कहा गया है कि बच्चों की थाली रंग बिरंगी होनी चाहिए। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि थाली में इतने सारे रंग कहाँ से लाऊं।
2: अरे कमला, मुझे भी यही बात समझ नहीं आई। क्या रंग बिरंगी थाली का मतलब यह है कि अलग अलग रंग की चीजें ही खिलानी है?
1: पता नहीं यार सुनीता, और मेरा बेटा तो सब्जी देखकर ही कह देता है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं पसंद।
2: हाँ कमला, मेरे घर में भी यही हाल है, उसे बस नमकीन, बिस्किट और पैकेट वाले खाने ही पसंद हैं।
1: हाँ, और मैं भी इसलिए ही परेशान हूँ कि आखिर बच्चे की थाली में रोज रोज क्या होना चाहिए।
2: हाँ कमला, ये सवाल तो मेरे मन में भी है, क्या रोज फल देना जरूरी है?
1: मुझे लगता है कि रोज फल देना चाहिए, लेकिन फल भी तो कितने महंगे हो गए हैं।
2: यही तो कमला, मेरे पड़ोस में एक महिला कह रही थी कि बच्चों को सेब, अंगूर, कीवी और महंगे फल खिलाओ, तभी बच्चा स्वस्थ रहेगा।
1: अच्छा, तो क्या महंगे फल ही ज्यादा पौष्टिक होते हैं?
2: हाँ कमला, मुझे भी यही समझ नहीं आता। हमारे यहाँ तो मौसम के हिसाब से इतने फल और सब्जियाँ मिलती है, लेकिन कमला लोग कहते हैं महंगा फल मतलब ज्यादा पोषण।
1: हाँ, लेकिन देखो ना, हमारे गांव में तो अमरूद, पपीता, केला जैसे फल मिल ही जाते हैं। क्या ये बच्चों के लिए अच्छे नहीं है क्या?
2: क्यों नहीं होंगे, मेरी माँ तो हमेशा कहती थी कि जो फल अपने मौसम में और अपने आसपास मिले उसे जरूर खाना चाहिए।
1: हाँ सही बात है, लेकिन बच्चों को समझाना तो मुश्किल है, उन्हें बाजार की चमकीली चीजें ज्यादा अच्छी लगती है।
2: पर एक बात बताओ कमला।
1: हाँ बताओ।
2: मेरे बेटे को दूध बिस्किट पसंद ही नहीं, दूध का गिलास देखते ही मुंह बना लेता है।
1: अरे मेरे घर में भी यही समस्या है, मैं सोचती हूँ कि दूध नहीं पिएगा तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा।
2: हाँ यही तो, क्या कैल्शियम सिर्फ दूध से मिलता है?
1: पता नहीं, शायद दही और पनीर से भी मिलता होगा।
2: और कमला पता है, हमारे यहाँ तो रागी भी खाई जाती है, क्या रागी से भी बच्चों को कुछ पोषण मिलता है?
1: बिल्कुल मिलता है, और बाजरा, मक्का, दालें, तिल, इन सभी के साथ हमारे पारंपरिक खाने में भी तो बहुत कुछ है जो हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद है।
2: हाँ कमला, लेकिन हम कभी कभी अपने पारंपरिक भोजन को साधारण समझ लेते हैं और बाजार की पैकेजिंग देखकर उसे ज्यादा अच्छा मान लेते हैं।
1: हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन एक और समस्या है, मेरी बेटी जो है ना, वो सब्जियाँ बिल्कुल नहीं खाती।
2: अरे हाँ कमला, ये तो मेरी बेटी भी करती है। मैं पालक बनाती हूँ तो कहती है मुझे हरी चीज नहीं खानी।
1: तो क्या करे, क्या बच्चों को रोज डांट कर खिलाए?
2: नहीं कमला, शायद डांटने से बच्चा और दूर भागेगा।
1: फिर क्या करे, बच्चों को कैसे खिलाए?
2: कमला, मैंने एक दिन सब्जियों को बहुत बारीक काट कर पराठे में मिला दिया था, बेटी ने बिना शिकायत के खा लिया।
1: अरे वाह, यानी तरीका बदल कर भी बच्चों को सब्जियां खिलाई जा सकती है।
2: हाँ कमला, कभी पराठे में, कभी दाल में, कभी खिचड़ी में, कभी सब्जियों का चीला बनाकर भी हम बच्चों को खिला सकते हैं।
1: हाँ, लेकिन अगर बच्चा एक सब्जी नहीं खाता तो हम उसे दूसरी सब्जी भी खिला सकते हैं।
2: बिल्कुल कमला, आखिर हर बच्चे की पसंद अलग जो होती है।
1: लेकिन एक बात और है, स्कूल में बच्चे को सुबह कुछ खिलाकर भेजना चाहिए, दोपहर में खाना देना चाहिए, शाम को कुछ देना चाहिए और रात को खाना, इन सभी बातों को कैसे तय करें?
2: हाँ कमला, शायद संतुलन जरूरी है। सिर्फ पेट भरना नहीं, शरीर को अलग अलग पोषक तत्व भी चाहिए।
1: मतलब थाली में सिर्फ चावल या सिर्फ रोटी भर देने से काम नहीं चलेगा?
2: शायद नहीं, साथ में दाल या कोई प्रोटीन वाली चीज, सब्जी, दही जैसी चीजें और उपलब्धता के अनुसार फल भी होने चाहिए।
1: हाँ, अब मुझे रंग बिरंगी थाली की बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है।
2: वो कैसे?
1: जैसे थाली में हरी सब्जी है, पीली दाल है, लाल टमाटर है, कोई मौसमी फल है, रोटी या बाजरा है और दही है, तो थाली अपने आप रंग बिरंगी हो जाएगी, है ना?
2: हाँ कमला, और हर रंग सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि अलग अलग पोषण देने वाली चीजों को शामिल करने का एक आसान तरीका है।
1: हाँ, तो बच्चों की थाली में रोज कुछ कुछ नया अलग अलग खाद्य समूह शामिल करने चाहिए, ऐसा ही ना?
2: हाँ कमला, लेकिन एक बात और सोच रही हूँ।
1: वो क्या?
2: हम माता पिता बच्चों के लिए खाना बनाते समय कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं?
1: कौन सी गलतियाँ?
2: कभी बच्चा खाना नहीं खाता है तो हम कभी उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं।
1: हाँ, ये गलती कभी कभार मुझसे भी होती है।
2: हाँ कमला, कभी बच्चा सब्जी नहीं खाता है तो कहते हैं ठीक है, जो खाना है खाओ।
1: और कभी बच्चा थोड़ा ज्यादा खा लेता है तो हम खुश हो जाते हैं, चाहे वो पैकेट वाला खाना ही क्यों ना हो।
2: बिल्कुल कमला, शायद हमें यह देखना चाहिए कि बच्चा क्या खा रहा है, कितना खा रहा है और कितनी विविधता से खा रहा है।
1: हाँ, और एक गलती हम ये भी करते हैं कि बच्चों को अपने स्थानीय भोजन के बारे में बताते ही नहीं है।
2: सही कहा, हमारे घरों में बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, दालें, तिल, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां और मौसमी फल भी उपलब्ध हैं। फिर भी बच्चे इन्हें पहचानते तक नहीं।
1: हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि पौष्टिक भोजन हमेशा महंगा नहीं होता।
2: बिल्कुल कमला, हमारे आसपास मिलने वाला सस्ता स्थानीय और मौसमी भोजन भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है।
1: बिल्कुल, अब मैं घर जाकर अपने बच्चे की थाली देखूंगी।
2: और क्या देखोगी तुम?
1: ये देखूंगी कि उसमें सिर्फ पेट भरने वाला खाना है या अलग अलग खाद्य पदार्थों का संतुलन भी है।
2: और कमला, मैं भी अपने बच्चे को सब्जियां डांट कर नहीं बल्कि नए नए तरीके से खिलाने की कोशिश करूंगी।

0: साथियों, जैसा कि अभी हमने सुना कमला और सुनीता की बातचीत में कि बच्चों की थाली से जुड़े कितने सारे सवाल हमारे सामने हैं। रंग बिरंगी थाली सिर्फ देखने में सुंदर बनाने की बात नहीं है, इसका उद्देश्य बच्चे के भोजन में विविधता और अलग अलग खाद्य समूहों को शामिल करने की आदत विकसित करना है। लेकिन अब इन सवालों के जवाब हम अनुमान से तो नहीं बल्कि विशेषज्ञ से जानेंगे। आज हमारे साथ कार्यक्रम में विशेषज्ञ अवश्य जुड़ेंगे, लेकिन अभी हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: बच्चे मन के सच्चे

0: साथियों, जैसा कि हमने गीत से पहले हमारी दो महिलाओं के संवाद से जाना कि किस तरीके से कई सारे सवाल जो हैं वो हमारे मन में रहते हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब जो हैं वो हम अनुमान से नहीं जान सकते बल्कि विशेषज्ञ से जानने होंगे। तो आज हमारे कार्यक्रम से विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं जो हमें बताएंगे कि बच्चों की रंग बिरंगी थाली वास्तव में कैसी होनी चाहिए और माता पिता किन बातों का ध्यान रखें। तो सुनते हैं उनकी बातों को। मैम नमस्कार।
1: नमस्कार
0: मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में। जैसा कि मैम आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: मैं नैना जैन, महिला एवं बाल विकास विभाग के सीडीपीओ के पद से मैं रिटायर्ड हुई हूँ। 2 साल हुए मुझे रिटायरमेंट हुए।
0: बिल्कुल।
1: और मैं 37 ईयर की मेरी अनुभव रहा है महिला एवं बाल विकास विभाग में।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आपका जो अनुभव है वो महिला एवं बाल विकास में रहा है और हम देख रहे हैं कि सितंबर माह में हम पूरे माह पोषण माह मनाते हैं। तो सबसे पहले तो कार्यक्रम में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रंग बिरंगी

0: रंगी थाली क्या होती है और क्या इसका मतलब सिर्फ अलग अलग रंग के खाद्य पदार्थ होना होता है या इसके पीछे पोषण का कोई विशेष उद्देश्य भी है?
1: इसमें क्या है कि पूरा पोषण का विषय होता है। जैसे पहले अपन लोग इजी वे में बताएं तो उनको तिरंगा भोजन बोलते हैं। उसमें क्या पूरी पौष्टिक तत्व उस थाली के अंदर सजाई जाती है जाके वो अपने बैलेंस डाइट होती है, संतुलित आहार। उसमें हरा सफेद और लाल पीले पदार्थों का अपना मिश्रण होता है उस थाली के अंदर। इसमें जैसे दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, दही है। इस प्रकार से उसको थाली को बैलेंस डाइट को बनाया जाता है जिससे अपने वो सारे पौष्टिक तत्व अपने शरीर के अंदर जाए।
0: बिल्कुल मैम। तो जैसा कि आपने बताया कि खाने को किस तरीके से पौष्टिक बनाया जाता है और हमारी जो थाली होती है उसे तिरंगा आहार हम कह सकते हैं और उस थाली में ये सारी चीजें होनी ही चाहिए। नहीं मैम, अलग अलग रंग के फल और सब्जियों का बच्चों के स्वास्थ्य में क्या महत्व है?
1: अलग अलग सब्जियों का, फलों का बच्चों के साथ में ये महत्व है क्योंकि बच्चा नए अपना जब जन्म लेता है उसके बाद में जो बच्चा अपना परिपूर्ण 5 साल की उम्र होती है, जो बच्चे की पूरी डेवलपमेंट की उम्र होती है, उसका मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक सारा विकास उसका उस समय होता है 5 साल की उम्र में। 80% उसका डेवलपमेंट है ना 5 ईयर की उम्र में होता है। तो उसके लिए बच्चों को उस समय फल सब्जियां वगैरह सब चीजें जो उसकी पौष्टिकता के लिए अपने शरीर को वृद्धि करने के लिए जरूरी है तो वो उसको अपने को उपलब्ध करवानी पड़ती है।
0: बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से अलग प्रकार की फल और सब्जियां बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। यही मैम आप में जानना चाहूंगी कि क्या यही जरूरी है कि बच्चे को सेब, अंगूर, कीवी जैसे महंगे फल ही खिलाए जाए? क्या महंगे फल ही ज्यादा पौष्टिक होते हैं?
1: नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अपने लोकल फूड है, जो लोकल अपने पास उपलब्ध है, जैसे केला है, अमरूद है, आम है, सीजन के जो भी फल अपने यहाँ पर अपने खेतों में उगाए जाते हैं, अपने घरों में उगाए जाते हैं, वो भी सारे पौष्टिकता से भरे हुए होते हैं। उसमें अपने को जरूरी नहीं कीवी और इनको मतलब बड़े ज्यादा महंगे फल लाकर उनको बच्चों को दिए जाए।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आप बहुत अच्छी बातें हमें बता रही हैं, तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि हमारे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में मिलने वाले स्थानीय और मौसमी कौन कौन से फल हैं जिन्हें बच्चे के भोजन में हम शामिल कर सकते हैं?
1: जैसे अपने मौसम के अनुसार गर्मियों में अपने आम आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: पका हुआ आम विटामिन ए का पूरा स्रोत होता है। आम है, चीकू है, जो घर के अंदर अपन लगाते हैं या खेतों में लगाते हैं, आम, चीकू, पपीता। बच्चों की डाइजेशन के लिए पपीता बहुत अच्छा है, पपीता में भी विटामिन ए होता है।
0: बिल्कुल।
1: अमरूद है, अमरूद में विटामिन सी और ये सब चीजें होती है। नींबू है, नींबू का तो रोज सेवन करना चाहिए, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है। तो जो भी फल अपने यहाँ पे उपलब्ध है, अपन अनार है, अनार भी लगाते हैं लोग घर में, तो अनार का भी जूस या अनार के दाने वगैरह मेश करके वो भी अपन बच्चों को दे सकते हैं।
0: बिल्कुल मैम। तो जैसा कि आपने बताया कि स्थानीय स्तर पर कई ऐसे फल हैं जो हम बच्चों के जीवन में शामिल करें ताकि उनका पोषण बना रहे। यही मैम मैं जानना चाहूंगी कि बच्चे की थाली में रोज हमें किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए जिससे उन्हें संतुलित पोषण मिल सके?
1: बच्चों की थाली के अंदर एक तो अनाज, दालें, हरी सब्जियां, दूध और दही से, दूध से बनी हुई दही, छाछ, ये सब चीजें शामिल होनी चाहिए। गुड़, अपने यहाँ पे लोकल में गुड़ अपन लोग होता तो है लेकिन उसको उपलब्ध बच्चों को नहीं देते हैं। उसका कारण क्या, गुड़ के अंदर भी आयरन होता है, आयरन युक्त होता है गुड़, इस कढ़ाई में बनाया जाता है गुड़ से उसको आयरन मिलता है। तो ये सारी चीजें हमारी थाली में होनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल मैम, आपने सही कहा कि हमें दूध, दही, गुड़, इन सारी चीजों को रोजाना बच्चों की थाली में काम में लेना चाहिए जिससे उन्हें संतुलित पोषण मिल सके। इसी के साथ मैम हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे दूध नहीं पीते, तो ऐसे में बच्चे को कैल्शियम कैसे दिया जा सकता है?
1: ऐसे में बच्चों को कैल्शियम देने के लिए हम दूध से बनी हुई वस्तुएं दे सकते हैं उसको, जैसे खीर है, दही है, छाछ है, और कैल्शियम के लिए अपने को सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियों को मेश करके दे सकते हैं। सहजन की जो फली होती है, सहजन की फली और सहजन के पत्ते, वो बहुत ही पौष्टिक तत्व है कैल्शियम के लिए।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन हमारे यहाँ क्या, सहजन को मतलब यूं माना जाता है कि ठीक है वह होगा, लेकिन सहजन के अंदर सबसे ज्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर वो पत्तियों का भी उपयोग करे, अगर खाने के अंदर जब अगर आटा गूंथे तो उसमें उसकी पत्तियां मेश करके मिला दे, या उसकी फलियों का जूस निकाल के उसके अंदर आटा गूंथ ले, या उसके अंदर भोजन बना ले, तो ये सारी चीजें अगर बच्चों को मिल जाती है तो पूरा प्रोटीन कैल्शियम का मिल जाता है उसको वहाँ पे।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा कि किस तरीके से हमें अलग तरीके अपनाकर बच्चों को इन सारी चीजों को लेकर प्रेरित करने की जरूरत है। यही हम देखते हैं कि मैम हरी सब्जियां देखते ही बच्चे जो है वो मुंह बनाने लगते हैं, ऐसे में माता पिता उन्हें सब्जी खाने की आदत कैसे डाल सकते हैं?
1: वो माता पिता भी, मेरा ये कहना है कि जब माता पिता अपना भोजन बनाए, जब रखे ना अपनी थाली में, तो उसके साथ में बच्चे की थाली भी परोसे, ताकि बच्चा उसको माता पिता की जो थाली में देखता है ना, वो बच्चा खाने की कोशिश करता है।
0: बिल्कुल।
1: उसको मतलब नई नई, जैसे उसी में अगर अपना गेहूं का, मक्के का, चने का, तीनों का आटा मिक्स करके उसी के अंदर सारी हरी पत्तेदार सब्जियां मिक्स करके दे दी, तो वो भी बच्चा खा लेगा, क्योंकि बच्चे को नई नई वेराइटियों का, इसको चखने का शौक होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो 5-6 दिन तक तो एक जैसा भोजन दिया जाए, फिर 6ठे दिन उसका चेंज करा जाए, परिवर्तन भी करना जरूरी है, कि बच्चों की इच्छा के अनुसार परिवर्तन बहुत जरूरी है। और आजकल जो पाउच वगैरह बच्चे ला ला के खा रहे हैं, वो बिल्कुल बेकार है, और उससे तो बच्चों के साथ में मतलब पोषण का कुछ भी तत्व नहीं मिलते हैं, उल्टा उसके उसकी बॉडी में रिएक्ट कर रहा है वो
0: चीजें।
1: माता पिता को ये समझाना पड़ेगा कि जो हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध है, और खिचड़ी बनाई जाए तो खिचड़ी तो सबसे ज्यादा लाभदायक है, बूढ़े भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, और हम लोग भी खा सकते हैं। खिचड़ी में आप सारी सब्जियां डाल दो, मूंग की दाल वगैरह, चावल है, मूंग की दाल है, बाकी सारी सब्जियां डाल के एक चम्मच घी भी ले लो, क्योंकि चिकनाई भी जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है। तो ये चीजें अगर खिचड़ी के रूप में भी बना के उनको खिलाई जाए, वो सारी चीजें, कद्दू मिलता है, कद्दू के अंदर कद्दू के पीस करके भी उसमें डाल दो खिचड़ी में।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैम,
1: अपन उसको पहुंचा सकते हैं उसके भोजन के माध्यम से अपन।
0: जी जी मैम, आपने सही कहा कि किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से बच्चों को सब्जियां खाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यही मैम, अगर हम एक दिन की बात करें तो बच्चों को किस तरीके से हम पूरे दिन में संतुलित भोजन दें, जिससे नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम के नाश्ते और रात के भोजन में किस तरह की अलग अलग चीजों को हमें शामिल करना चाहिए।
1: जैसे सुबह नाश्ते में अगर पोहा दे दिया बच्चों को, पोहा भी बहुत पौष्टिक होता है, दूध पोहा है वो बहुत पौष्टिक है, और बच्चा पचा भी लेता है। पोहा क्या होता है कि चावल से जब उसको बनाया जाता है ना, पोहे को बनाने का जो निर्माण किया जाता है, उसमें पूरा कैल्शियम और पोटेशियम, प्रोटीन और विटामिन सारे होते हैं उसमें। तो पोहा के अंदर हरे धने की पत्तियां भी जाती है, थोड़ा बहुत मसाला भी जाता है, बच्चे के लिए मतलब सब चीज उपलब्ध हो सकती है उसमें। चिकनाई के लिए थोड़ा सा तेल या घी का उपयोग कर लिया अपन ने, शुगर या ये गुड़ डाल दिया उसमें, पोहे का नाश्ता बना ले, कभी मतलब कुछ अनाजों का मिक्स करके कुछ पकौड़ी टाइप बना के बच्चों को दे सकते हैं।
0: जी जी,
1: मतलब जो चाहे तो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा कोई भी नाश्ता बना के उसको पौष्टिकता के रूप में अपन दे सकते हैं। दोपहर के खाने के अंदर उसको सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए, मतलब दाल, चावल, रोटी, सब्जी और दही। दही तो होना ही चाहिए थाली के अंदर।
0: इसी के साथ मैम, अब मैं जानना चाहूंगी कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में कई पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं, तो कौन कौन से पारंपरिक खाद्य पदार्थ बच्चों के लिए पौष्टिक हो सकते हैं, और हमें उन्हें कैसे भोजन में शामिल करने की जरूरत है।
1: मतलब हमारे जो पारंपरिक त्योहारों पे आप जैसे तिल के लड्डू बनाए, अब सब्जियों में के अंदर तिल का बहुत उपयोग होता है, तिल के अंदर पूरा कैल्शियम होता है, गुड़ में आयरन होता है। इसी प्रकार से अलग अलग मतलब मिठाइयां वगैरह जो भी बना के अपन पूरे दिन के अंदर अगर बच्चे को पारंपरिक अनाज के अंदर सारे, यहाँ पर देखो चना उपलब्ध है, मक्का उपलब्ध है, गेहूं उपलब्ध है, सोयाबीन उपलब्ध है, सोयाबीन भी प्रोसेस करके उसका छिलका वलका उतार के अगर सारा मिक्सी रोटी का आटा मतलब पिसवा लिया जाए, मोटा आटा और मोटा अनाज अपने यहाँ पर कम पैदा होता है आदिवासी क्षेत्र में, अपने बाजरा और जो नहीं होता है, क्योंकि अगर बाजरा और जो भी लिया जाए ना तो बहुत बढ़िया पौष्टिक तत्व है कि मोटा अनाज खाना चाहिए। तो जो भी आटा पिसवा है ना वो मिक्स आटा पिसवा ले, उसकी रोटी वैसे भी बनानी है, वैसे ही बनानी, तो मक्का तो खाते ही है, मक्के के साथ में चने का साबुत चने, काले चने यहाँ पे होते ही है, वो प्रोटीन से भरपेट होते हैं। अंकुरित अनाज जैसे मूंग है, चना है, अंकुरित करके भी अपन उसको ले सकते हैं।
0: बिल्कुल मैम,
1: एक दो दिन पहले अपन भिगो दे किसी कपड़े में बांध के रख लो उसको, और तो दूसरे दिन तीसरे दिन अंकुरित हो जाते हैं, उसको छोक के दे सकते हैं बच्चों को, टमाटर वमाटर सब डाल के उसमें। और एक सबसे बड़ी बात है, अपने यहाँ पे सिंगदाना भी होता है, मतलब मूंगफली, और मूंगफली को भी अगर सेक कर, और वो काजू और पिस्ते और बादाम से भी ज्यादा पौष्टिक है मूंगफली,
0: और
1: मूंगफली को भी मतलब किसी भी प्रकार की वेराइटी बना के बच्चों को दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, परिवार में सब जो भी लोग हैं वो सब उसका सेवन कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चे के भोजन को लेकर माता पिता अक्सर कौन सी गलतियां कर देते हैं जिनसे बच्चों के पोषण पर असर पड़ सकता है।
1: सबसे बड़ी गलती तो यही करते हैं, एक तो हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं खाना बनाते समय, क्योंकि अपना जल भी अपने शरीर के लिए बहुत जरूरी है, शुद्ध जल। जो अपन पौष्टिकता की बात करते हैं तो सबसे पहले जल का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, कि जो भी हम बच्चे को जो जल उपयोग में ले रहे हैं, जो खाना बनाने में हमारे हाथ धोए हुए होने चाहिए, नाखून साफ होने चाहिए, बच्चों को भी जब परोस हो तो बच्चे के भी हाथ धुला के उनको भोजन कराने की आदत डालनी चाहिए। और दूसरी चीज है कि भोजन में भी उनको बच्चों को हर चीज को सिखाना चाहिए, कि जो भी भोजन उपलब्ध है उसको मतलब किसे बड़े चाव से से खाए और चबा चबा के खाए, ये सारी चीजें उनको माता पिता को उसको बतानी पड़ती है। और अपने यहाँ पे यही भूल करते हैं कि अपन एक हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, सब्जियों को पहले काटने के बाद धोते हैं, जबकि पहले धो के फिर काटनी चाहिए सब्जियाँ।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और रस्सा रस्सा सब फेंक देते हैं, चावल को दालों को अच्छे से धो धो के बिल्कुल उसकी पौष्टिकता खत्म कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल मैम आपने सही कहा। तो जैसा कि आज कार्यक्रम में आपने हमें बहुत अच्छी बातों से अवगत करवाया है, तो यही अंत में आप हमारे श्रोता साथी और माता पिता को क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे ताकि वे आज से ही अपने बच्चे की थाली में ज्यादा पौष्टिक और संतुलन बनाने की कोशिश करें?
1: मैं तो सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि एक तो जब बच्चा जन्म लेता है तब तक 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही पर्याप्त है, उसका ऊपर कुछ भी उसको नहीं देना है। 6 महीने से 2 साल तक के बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार जो भी अपने घर में बना हुआ खिचड़ी है, दाल है, दलिया है, उसको मेश करके उसको कटोरी भर भर के, फिर 3 साल तक उसको जितना जो हमने थाली में खाया वो वही उसको भी परोस के हमको देना है और धीरे धीरे उसको खाने की आदत को डालना है। और हम कुछ भी मतलब अच्छे से उसको खाना सेवन करें, क्योंकि हम लोग कमाते किसके लिए, पूरे दिन भर हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारी औरतें भी खेतों में मजदूरी करती है लेकिन वो अपने खाने पे ध्यान नहीं देती हैं। समय पे उनको जो मिलना चाहिए भूखे के भूखे दौड़ती रहती हैं, जबकि कलेवा की आदत होनी चाहिए, पहले पहले कलेवा की आदत चाहिए मैडम सभी लोगों को, कि कलेवा करके ही कहीं निकलते थे
0: जी जी।
1: और आज क्या है कि वो भूखे भूखे के भूखे निकल जाते हैं, फिर वो दिन भर कमाते हैं लेकिन उसका उपयोग अपने शरीर के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि शरीर ही स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ स्वस्थ है, शरीर भी अगर बीमार हो गया तो फिर सब कुछ बीमार हो जाएगा, क्योंकि पूरा परिवार ही टूट जाता है इलाज कराने में मेडिसिन में। तो मेरा तो यही कहना है कि किसी भी प्रकार की दवाइयां लेने की हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध है, उसको अच्छे से बना के हम लोग खाए और रोज हमारे भोजन के अंदर हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दाल है, चावल है, रोटी है, दही है, मिस्सी रोटी बना के, हर तरह के हलवा बना के, जो भी जम लो जो पसंद आवे उस हिसाब से अपन को लेना है, उसको उपयोग करके और अपने को शरीर को स्वस्थ रखना है।
0: बिल्कुल मैम आपने बहुत अच्छी बात हमारे श्रोता साथियों को कही है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: थैंक यू मैडम, और आपने मेरा सहयोग लिया और मेरे बातों को सुना, और लोगों को भी मैं संदेश यही देना चाहती हूँ कि जीवन में अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ध्यान रखे, और स्वास्थ्य ही सब कुछ है अपने जीवन में, निरोगी काया सबसे बड़ी माया।
0: बिल्कुल मैम। श्रोताओं आज की बातचीत से हम यह जरूर समझ गए कि किस तरीके से बच्चों की थाली में विविधता होने की जरूरत है। बच्चे की थाली को सिर्फ पेट भरने का साधन न समझे बल्कि उसके विकास की पहली पाठशाला समझे। हमारे आसपास उपलब्ध मौसमी फल, हरी सब्जियां, दालें, अनाज, मोटे अनाज, दूध, दही, पारंपरिक खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करके हम बच्चों के भोजन को विविध बना सकते हैं। और हाँ, हर बच्चा हर चीज तुरंत पसंद करे यह जरूरी नहीं, इसलिए खाने को लेकर बच्चों पर दबाव या डांट के बजाय धैर्य, उदाहरण और नए तरीके अपनाना ज्यादा उपयोगी होगा। तो जैसा कि बातें ढेर सारी हो गई है, समय हो चला है विदा लेने का। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: साथियों, जहां कर्म में विश्वास, सोच में सकारात्मकता और मन में धैर्य हो, वहां मुश्किल रास्ते भी मंजिल की ओर ले जाते हैं, और यही कान्हा की सीख है।
1: जी हां, आप सभी को वागर रेडियो परिवार की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर,
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: स्वीकार कीजिएगा साथियों हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कृष्ण की सीख, युवा जीवन की राह, आज के दौर में कान्हा हमें क्या सिखाते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित है उस व्यक्तित्व को जिनकी मुस्कान में अपनापन है, जिनकी बांसुरी में प्रेम है, और जिनकी मित्रता में विश्वास है, और जिनकी वाणी में जीवन को दिशा देने वाला ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण को।
0: बिल्कुल,
1: जन्माष्टमी केवल एक त्योहार नहीं है, ये उस विचार और व्यक्तित्व को याद करने का अवसर है जिसने हजारों वर्षों से लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा दी है।
0: बिल्कुल,
1: श्री कृष्ण का जीवन हमें समझाता है कशिश की परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सही सोच, धैर्य, कर्म और आत्मविश्वास के साथ इंसान अपनी राह बना सकता है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर हमारे युवा साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना कार्यक्रम का दस्तूर है, और आज जैसा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व भी है, तो क्या ना जो शुरुआत का गीत है वो हमारे युवा साथियों को कान्हा से जुड़ा हुआ गीत ही सुनवा दे।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कृष्ण किसी के युवा जीवन की राह को लेकर।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, हम जैसा कि जानते हैं कि आज के हमारे युवा साथी अनेक सपनों के बीच जी रहे हैं। जागृति जी, उनके सामने पढ़ाई का दबाव भी है, करियर की चिंता भी है, भविष्य को लेकर असमंजस भी है और रिश्तों को समझने की चुनौती भी है।
1: जी हाँ,
0: साथ ही साथ सोशल मीडिया की दुनिया में खुद को दूसरों से तुलना करने के दबाव भी हैं। ऐसे समय में सवाल ये उठता है कि क्या हजारों साल पहले कही गई कृष्ण की बातें आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है? साथियों, उसका जवाब बिल्कुल हाँ है, क्योंकि समय बदलता है, तकनीक बदलती है, जीवन जीने के तरीके बदलते हैं, लेकिन इंसान की मूल चुनौतियाँ जैसे कि भ्रम, डर, असफलता, निर्णय और अपने लक्ष्य की तलाश आज भी हमारे साथ हैं।
1: बिल्कुल कशिश, श्री कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक ही कर्म पर ध्यान देना। इसका अर्थ ये नहीं है श्रोता साथियों कि हमें परिणाम की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये है कि परिणाम के डर से अपने प्रयास को कमजोर नहीं होने देना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: आज का युवा अक्सर शुरुआत करने से पहले ही परिणाम के बारे में सोचने लगता है। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, अगर मेरा चयन नहीं हुआ तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मेरी मेहनत का परिणाम मुझे नहीं मिला तो, ये सवाल कई बार कशिश हमारे कदम रोक लेते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, कृष्ण की सीख हमें याद दिलाती है कि हमारा नियंत्रण मुख्य रूप से हमारे प्रयास, हमारी तैयारी और हमारे व्यवहार पर है। इसीलिए युवा को अपने लक्ष्य के लिए ईमानदारी से मेहनत करनी होगी और असफलता को अपनी पहचान नहीं बल्कि सीख का अवसर समझना होगा।
0: जी जी,
1: क्योंकि रास्ते में आने वाली हर ठोकर ये नहीं कहती श्रोताओं कि आप हार गए, कई बार वो सिर्फ ये सिखाती है कि अगला कदम थोड़ा संभल कर रखना है।
0: जी हाँ जागृति जी, साथी दोस्तों, श्री कृष्ण का जीवन चुनौतियों से भरा रहा है, लेकिन हर परिस्थिति में उनका व्यक्तित्व हमें धैर्य और संतुलन की सीख देता है। साथियों,
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि आज के युवाओं के सामने भी अनेक तरह की चुनौतियाँ हैं। परीक्षा में उम्मीद के अनुसार अंक न आना, नौकरी न मिलना, किसी प्रतियोगिता में असफल होना, दोस्ती में मनमुटाव होना या अपने भविष्य को लेकर भ्रमित होना।
1: बिल्कुल
0: साथियों, ये सभी स्थितियाँ मन को परेशान आपको कर सकती है। ऐसे समय में हमें तुरंत हार मानने के बजाय स्वयं से ये पूछना चाहिए कि मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूँ।
1: जी हाँ,
0: यह सोच जागृति जी हमें मजबूत बनाएगी। यानी कि साथियों, मुश्किल समय हमेशा के लिए नहीं रहता, इसलिए परेशानी के समय लिया गया कोई भी जल्दबाजी का फैसला पूरी जिंदगी का फैसला नहीं बनना चाहिए। ऐसे में हमारे युवा साथियों को रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करनी चाहिए और फिर ही आगे की राह तय करनी चाहिए।
1: जी हाँ, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि अपने लक्ष्य हमें स्पष्ट रखने होंगे, तभी हमारे जो रास्ते हैं वो हमें आसान लगेंगे। महाभारत के प्रसंगों में श्री कृष्ण बार बार हमें समझाते हैं कशिश कि जीवन में दिशा और उद्देश्य कितना महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल,
1: आज हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा विकल्प है, पढ़ाई क्षेत्र पड़े हैं, करियर के नए रास्ते खुले हैं और डिजिटल दुनिया ने सीखने के अनगिनत अवसर दिए हैं।
0: जी जी,
1: लेकिन विकल्प ज्यादा होने के कारण कई बार युवा उलझ भी जाता है। कभी वो किसी दोस्त को देखकर अपना लक्ष्य बदल देता है, कभी सोशल मीडिया पर किसी सफलता देखकर खुद को पीछे समझने लगता है। यहाँ कृष्ण की सीख हमें अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देती है।
0: बिल्कुल,
1: हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, किसी और की मंजिल देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझिए।
0: जी हाँ जागृति जी, तो इस विषय को लेकर जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से बात कर ही रहे हैं हमारे युवा साथियों से और जान रहे हैं कि आज के समय में गाना हमें क्या सीख देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुन ले।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में और हम बात कर रहे थे कृष्ण की सीख, युवा जीवन की राह, आज के दौर में कान्हा हमें क्या सिखाते हैं को लेकर। तो जैसे कि गीत से पहले हमने जाना था कि कृष्ण की पहली सीख अपने कर्म पर विश्वास रखें, मुश्किल समय में धैर्य रखना भी एक शक्ति है। साथ ही हमने लक्ष्य स्पष्ट हो तो रास्ते आसान होने लगते हैं ये भी जाना था।
1: जी हाँ,
0: इसी में जानते हैं कि किसी और की मंजिल देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझिए श्रोता साथियों। ये आपको तय करना है कि आपकी रुचि क्या है, आपकी क्षमता क्या है और आप समाज के लिए क्या योगदान देना चाहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लक्ष्य आपका अपना होगा तभी उसके लिए की गई मेहनत भी आपको भीतर से संतुष्ट करेगी।
1: बिल्कुल जागृति जी। साथी युवा साथियों, कृष्ण से हम सच्ची मित्रता का अर्थ भी सीख सकते हैं। जैसे कि साथियों, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता भारतीय संस्कृति में मित्रता के सुंदर उदाहरणों में से एक मानी जाती है।
0: बिल्कुल,
1: आज दोस्त बहुत है लेकिन सच्चा दोस्त कौन है ये समझना जरूरी है। दोस्तों, सच्चा मित्र वह नहीं है जो केवल हमारी खुशी में हमारे साथ खड़ा हो। सच्चा मित्र तो वह है जो हमारी गलती पर हमें सही रास्ता दिखाए, कठिन समय में हमारा हौसला बढ़ाए और अपनी सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय खुश हो। युवा जीवन में संगति का बहुत महत्व है जागृति जी, इसलिए दोस्तों का चुनाव सोच समझकर करना है। ऐसी संगति चुननी है साथियों जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, आपकी क्षमताओं पर विश्वास जगाए और आपको गलत रास्ते से दूर रखे।
0: बिल्कुल, इसी के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आज हमारे हाथ में स्मार्टफोन है और हमारी उंगलियों पर पूरी दुनिया की जानकारी मौजूद है। सोशल मीडिया पर हर दिन हमें किसी न किसी सफलता, उपलब्धि और चमकती हुई जिंदगी दिखाई देती है कशिश
1: जी, जी।
0: लेकिन हमें ये याद रखना होगा दोस्तों कि दूसरों की दिखाई देने वाली जिंदगी और उनकी वास्तविक जिंदगी एक जैसी नहीं होती। कृष्ण जी की सीख हमें अपने भीतर स्थिर रहने की प्रेरणा देती है। दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद से हमें सवाल करना है, क्या मैं कल से आज थोड़ा बेहतर हुआ हूँ? अगर जवाब हाँ है दोस्तों तो यही आपकी प्रगति है। तकनीक का इस्तेमाल ज्ञान, शिक्षा, रचनात्मकता और अवसरों के लिए करें, लेकिन इतना भी नहीं कि स्क्रीन हमारे समय, ध्यान और वास्तविक रिश्तों पर हावी हो जाए।
1: बिल्कुल साथी, युवा साथियों, श्री कृष्ण के व्यक्तित्व हमें जीवन के कई रंग दिखाई देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि वे प्रेम और आनंद से जुड़े हुए हैं लेकिन साथ ही ज्ञान, नीति और जिम्मेदारी के भी प्रतीक हैं। युवाओं के लिए इससे एक खूबसूरत सीख निकलती है जागृति जी, और वो है कि जीवन में केवल पढ़ाई या केवल काम ही सब कुछ नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: परिवार के लिए समय चाहिए, दोस्तों के लिए भी समय चाहिए, अपने स्वास्थ्य और रुचियों के लिए भी समय चाहिए और सबसे जरूरी अपने आप को समझने के लिए समय चाहिए। दोस्तों, जीवन में संतुलन होगा तो सफलता का आनंद भी महसूस होगा, इसलिए अपने सपनों के पीछे दौड़िए लेकिन रास्ते में जीवन को महसूस करना आप मत भूलिए।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ कशिश हमारे श्रोता साथियों को हम ये भी कहना चाहेंगे कि कृष्ण हमें नेतृत्व का एक अलग रूप भी सिखाते हैं। एक अच्छा नेता वो नहीं जो हर काम खुद करे, बल्कि वो है जो सही समय पर सही व्यक्ति को सही दिशा दिखा सके।
1: बिल्कुल,
0: आज के युवाओं में नेतृत्व की क्षमता तो बहुत जरूरी है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कार्यस्थल हो या समाज, हर जगह ऐसे युवाओं की जरूरत है जो अपनी बात कहने के साथ साथ दूसरों की बात सुनना भी जानते हो।
1: जी जी,
0: नेतृत्व का अर्थ केवल आगे खड़ा होना नहीं है श्रोताओं, नेतृत्व का अर्थ है जिम्मेदारी लेना, निर्णय लेना और जरूरत पड़ने पर दूसरों का साथ देना।
1: बिल्कुल जागृति जी। साथियों, सफलता को बहुत जल्दी पाने की इच्छा युवाओं में दिखाई देती है, लेकिन वास्तविक सफलता अक्सर धीरे धीरे बनती है।
0: बिल्कुल,
1: किसी परीक्षा में असफलता, किसी प्रतियोगिता में हार या किसी अवसर का हाथ से निकल जाना जीवन का अंत नहीं है। एक असफल परिणाम जागृति जी केवल ये बताता है कि इस बार परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहा।
0: जी हाँ,
1: इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य भी ऐसा ही रहेगा। साथियों, कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर हमारे युवा साथी ये सोच सकते हैं कि मैं परिस्थिति को बदल नहीं सकता तो अपनी तैयारी और दृष्टिकोण को बेहतर जरूर कर सकता हूँ।
0: जी हाँ
1: साथियों, यही सोच धीरे धीरे आत्मविश्वास को मजबूत करती है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। और जन्माष्टमी पर यानी कि आज के दिन हम कान्हा का जन्मोत्सव मनाते हैं, मंदिर सजते हैं, झांकियां सजती है, भजन गूंजते हैं और वातावरण भक्तिमय हो जाता है।
1: जी हाँ,
0: लेकिन श्रोताओं, इस त्योहार की सुंदरता तब और बढ़ जाती है जब हम कृष्ण के जीवन से मिली एक अच्छी सीख को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। अगर हम प्रयास करें कि हम मेहनत करेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहेंगे, असफलता से सीखेंगे, अच्छे मित्र चुनेंगे, दूसरों से बेवजह तुलना नहीं करेंगे, तकनीक का सही उपयोग करेंगे और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखेंगे, तो यही कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की सच्ची कोशिश होगी।
1: बिल्कुल,
0: तो साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से बस यही कहना चाहेंगे कि जब रास्ता कठिन हो तो धैर्य रखिए, जब मन भ्रमित हो तो सही सलाह लीजिए, जब असफलता मिले तो उससे जरूर सीखिए, जब सफलता मिले तो विनम्र रहिए और जब लक्ष्य तय कर ले तो ईमानदारी से अपने कर्म में जुट जाइए।
1: बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों कृष्ण की सीख केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है।
0: बिल्कुल,
1: कृष्ण हमें बताते हैं कि जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होगी, लेकिन उन परिस्थितियों में हमारा दृष्टिकोण कैसा होगा साथियों, ये बहुत ही हद तक हमारे हाथ में है। इसलिए इस जन्माष्टमी अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप परिस्थितियों से नहीं अपनी सोच और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाएंगे।
0: बिल्कुल, तो हम हमारे श्रोता साथियों को ये कहना चाहेंगे कि कान्हा की बांसुरी हमें मुस्कुराना सिखाए, गीता का ज्ञान हमें कर्म करना सिखाए, उनकी मित्रता हमें रिश्तों को निभाना सिखाए और उनका जीवन हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ना सिखाए। क्योंकि जीवन में रास्ते कितने भी कठिन क्यों न कशिश, अगर सोच सकारात्मक हो, कर्म ईमानदार हो और मन में विश्वास हो तो मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद हमेशा बनी रहती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से आज युवा साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी हैं। हमने जाना कि किस प्रकार से कृष्णा का जो व्यक्तित्व है वो अलग अलग तरीके से हमारे युवा साथियों को ढेर सारे संदेश देता है और प्रेरणादायक बातें बताता है। और इन्हीं बातों से हमारे युवा साथी हम कह सकते हैं कि प्रेरित हो पाए हैं। तो जैसा कि दोस्तों बातें ढेर सारी हो चुकी हैं, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहेंगे यहाँ पर एक और गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: गीत के साथ साथियों हम विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खावानो सोड़ो, बेशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। बागड़ रेडियो एवं बागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोता कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण के कर्म योग से सीखे करते हुए ही सच्चा धर्म है। श्रोताओं, धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं, धर्म उस जिम्मेदारी का नाम है जिसे हम ईमानदारी से निभाते हैं।
0: बिल्कुल
1: अंजलि, जब जीवन के रास्ते पर संशय कठिनाई और असमंजस सामने आया तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का संदेश दिया। कर्म से भागना नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना ही जीवन का सच्चा मार्ग है। आज भी श्री कृष्ण का यही संदेश हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो अपने हिस्से का कर्तव्य ईमानदारी से निभाना ही सच्चे धर्म की पहचान है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों न कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है श्री कृष्ण के कर्म योग से सीखे करते हुए ही सच्चा धर्म है विषय को लेकर।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, हम देखते हैं कि धर्म केवल पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है।
0: जी हाँ।
1: धर्म वह जिम्मेदारी है जिसे हम ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, जब जीवन में कठिन परिस्थितियां सामने आए और मन दुविधा में पड़ जाए, तब अपने कर्तव्यों से पीछे हटना आसान लगता है। लेकिन श्री कृष्ण का कर्म योग हमें सिखाता है कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। अपने हिस्से का कर्म पूरी निष्ठा से करना चाहिए और यही सच्चे धर्म की पहचान है।
0: बिल्कुल अंजलि, भारतीय संस्कृति में संसार को जीवन के बहुत सारे महान सिद्धांत दिए हैं। इनमें कर्म योग का स्थान बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, कर्तव्य, धर्म और जीवन के उद्देश्य का जो संदेश दिया, वो केवल एक युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है। ये संदेश आज भी हमारे दैनिक जीवन में उतना ही प्रासंगिक है।
1: बिल्कुल।
0: महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने सामने खड़े संबंधियों, गुरुओं और प्रियजनों को देखकर दुविधा में पड़ गए थे। वे अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस में थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे मन के अनुसार नहीं होती हैं, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति हमारी निष्ठा हमारे हाथ में होती है। और यही कर्मयोग का सार है, कर्म से भागना नहीं बल्कि अपने उचित कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि हम बात ही कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपने कर्तव्य को निभाने की जरूरत है,
0: बिल्कुल
1: यही बात करें तो श्रोता साथियों, आज के समय में भी मनुष्य अनेक भूमिकाएं निभाता है। विद्यार्थी का कर्तव्य पढ़ाई करना है, शिक्षक का कर्तव्य है ज्ञान देना, किसान का कर्तव्य है अन्न उगाना, माता पिता का बच्चों का पालन पोषण करना और नागरिक का समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना।
0: जी हाँ।
1: जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभाता है, तब परिवार, समाज और राष्ट्र मजबूत बनता है।
0: बिल्कुल अंजलि, सरल शब्दों में कहें तो कर्तव्य को निष्ठा और समर्पण के साथ करना तथा उसके परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता में न उलझना ही कर्मयोग का सरल उपाय है।
1: बिल्कुल।
0: श्री कृष्ण ने कर्म को जीवन का आधार माना। मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता। इसीलिए प्रश्न ये नहीं है श्रोताओं कि हम कर्म करेंगे या नहीं, बल्कि ये है कि हमारा कर्म कैसा होगा।
1: बिल्कुल।
0: अगर कर्म स्वार्थ, अहंकार और लालच से प्रेरित होगा तो उससे अशांति पैदा हो सकती है। लेकिन अगर कर्म ईमानदारी, सेवा, जिम्मेदारी और लोक कल्याण की भावना से किया जाए तो वही कर्म समाज के लिए शक्ति बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: कर्मयोग हमें ये सिखाता है कि हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। सफलता मिले तो अहंकार नहीं और असफलता मिले तो निराश नहीं। दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति अपने कर्तव्य और प्रयास से जुड़ा रहे, यही कर्मयोग अंजलि हमें सिखाता है।
1: जी हाँ जागृति जी, यही अब बात आती है कि कर्तव्य ही सच्चे धर्म की पहचान है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, धर्म को केवल बाहरी आडंबरों से नहीं समझा जा सकता। यदि कोई व्यक्ति पूजा करता है लेकिन अपने परिवार, समाज या कार्य के प्रति जिम्मेदार नहीं है तो उसके आचरण में धर्म की भावना अधूरी रह जाती है।
0: बिल्कुल।
1: सच्चा धर्म हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देना, जरूरतमंद की सहायता करना, माता पिता का सम्मान करना, ईमानदारी से काम करना, प्रकृति की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना और देश के नियमों का पालन करना भी धर्म का ही रूप है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए कहा जा सकता है श्रोता साथियों कि धर्म का सबसे सुंदर रूप कर्तव्य है। जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं, तब हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज हम जान रहे हैं श्री कृष्ण के कर्म योग से किस तरीके से हम कर्तव्य की सच्चा धर्म की भावना को सीख सकते हैं, जिसमें जागृति जी हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे थे, यही बात करते हैं परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण है प्रयास को लेकर।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, आज की दुनिया में सफलता बहुत महत्व रखती है हर किसी व्यक्ति के जीवन में। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके प्रयास का परिणाम तुरंत मिले। विद्यार्थी अच्छे अंक चाहते हैं, खिलाड़ी जीतना चाहता है और युवा अपने करियर में जल्दी सफलता पाना चाहता है। लेकिन जागृति जी, हर प्रयास का परिणाम तुरंत हमारे अनुसार नहीं आता।
1: बिल्कुल
0: कर्मयोग हमें सिखाता है कि परिणाम की चिंता में हमें अपने वर्तमान कर्म को कमजोर नहीं करना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: हमारा वास्तविक अधिकार हमारे प्रयासों पर है। यदि विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ता है तो अपनी गलतियों से सीखता है और लगातार प्रयास करता है।
1: जी हाँ।
0: तो वह केवल जागृति जी परीक्षा के परिणाम के लिए नहीं बल्कि अपने भविष्य के निर्माण के लिए काम कर रहा होता है।
1: बिल्कुल, इसलिए कहा गया है कि श्रेष्ठ कर्म स्वयं में एक उपलब्धि है। और इसी के साथ अंजलि, हम बात करते हैं, अर्जुन की दुविधा केवल महाभारत की कहानी नहीं है।

0: आज का मनुष्य भी जीवन के अनेक मोड़ों पर अर्जुन की तरह दुविधा में पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: विद्यार्थी सोचता है कि पढ़ाई कठिन है इसलिए मेहनत क्यों करूं, कर्मचारी सोचता है कि मुझे उचित सम्मान नहीं मिल रहा इसलिए मैं पूरी मेहनत क्यों करूं, नागरिक सोचता है कि जब दूसरे नियम नहीं मानते तो मैं ही क्यों मानूं। यही सोच धीरे धीरे जिम्मेदारी से दूरी पैदा करती है।
1: बिल्कुल।
0: श्री कृष्ण का कर्मयुग हमें याद दिलाता है श्रोताओं कि दूसरे क्या कर रहे हैं ये हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हम अपना कर्तव्य कितनी ईमानदारी से निभाते हैं ये हमारे हाथ में है। इसलिए अपने कर्म को दूसरे के व्यवहार से नहीं जोड़ना चाहिए। साथ ही अगर कर्मयुग का एक महत्वपूर्ण संदेश आपको बताए तो निष्काम कर्म, यानी कि निष्काम कर्म का अर्थ ये नहीं है कि हमें जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रखना है। इसका अर्थ यह है श्रोताओं कि अपने अच्छे कर्म को केवल व्यक्तिगत लाभ से न छोड़े। अंजलि, एक शिक्षक अगर केवल वेतन के लिए नहीं बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाता है तो उसका कर्म और अधिक सार्थक बन जाता है।
1: जी जी।
0: एक किसान केवल अपनी आय के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए अन्न पैदा करता है। एक डॉक्टर केवल अपने पेशे के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा के लिए काम करता है। एक सफाई कर्मी केवल अपना काम पूरा नहीं करता बल्कि समाज को स्वच्छ रखने में योगदान देता है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, जब व्यक्ति अपने कर्म में सेवा की भावना जोड़ देता है तब उसका सामान्य काम भी महान बन जाता है।
1: जी हाँ जागृति जी, यही अब बात आती है युवाओं के लिए कर्म योग की सीख की।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, आज का युवा ऊर्जा, प्रतिभा और नए विचारों से भरा हुआ है। उसके सामने अवसर भी है और चुनौतियाँ भी है। ऐसे समय में कर्मयोग की सीख युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल।
1: युवा को यह समझना चाहिए कि सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। निरंतर मेहनत, अनुशासन, सीखने की इच्छा और सही दिशा ही सफलता का मजबूत आधार बनती है। असफलता आने पर प्रयास छोड़ देना कर्मयोग नहीं है। आलोचना होने पर रुक जाना कर्मयोग नहीं है। कठिन परिस्थिति देख कर जिम्मेदारी से भाग जाना भी कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग कहता है कि रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन कर्तव्य से पीछे मत हटो।
0: बिल्कुल।
1: युवाओं को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, अपने कौशल को विकसित करना चाहिए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: यही विद्यार्थियों के कर्तव्य की बात करें तो विद्यार्थी जीवन भविष्य की नींव तैयार करता है। हम कह सकते हैं कि यह जो समय होता है उसमें विद्यार्थी का सबसे बड़ा कर्तव्य है ज्ञान प्राप्त करना।
0: बिल्कुल।
1: पढ़ाई केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं जागृति जी, बल्कि जीवन को समझने के लिए होनी चाहिए।
0: जी हाँ।
1: विद्यार्थी को समय का सम्मान करना चाहिए, शिक्षकों और माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अनुशासन बनाए रखना चाहिए और अपनी क्षमता को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: यदि विद्यार्थी आज अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहेगा तो कल वह एक जिम्मेदार नागरिक बन सकेगा।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि परिवार समाज की पहली इकाई है। परिवार में हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होती है। माता पिता का सम्मान करना, बच्चों का उचित मार्गदर्शन करना, भाई बहनों के साथ सहयोग रखना और परिवार के बुजुर्गों का ध्यान रखना हमारे सामाजिक संस्कारों का हिस्सा है। परिवार में अगर हर व्यक्ति केवल अपने अधिकार की बात करे और अपनी जिम्मेदारी भूल जाए तो संबंध कमजोर होने लगते हैं। इसके विपरीत जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते हैं तब परिवार मजबूत बनता है। हम केवल अपने परिवार के सदस्य नहीं है श्रोताओं, हम समाज का भी हिस्सा है। समाज के प्रति हमारे कर्तव्य है कि हम स्वच्छता रखें, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखें, पानी और बिजली की बचत करें, पेड़ पौधों की रक्षा करें और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें।
1: जी जी।
0: ये सारी बातें हम समय समय पर कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों आपको बताते भी हैं। सड़क पर यातायात नियमों का पालन करना भी सामाजिक जिम्मेदारी है। सामाजिक संपत्ति की रक्षा करना भी हमारा ही कर्तव्य है। कई बार अंजलि हम सोचते हैं कि हमारी छोटी सी गलती से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन श्रोताओं समाज लाखों लोगों से मिलकर बनता है। यदि हर व्यक्ति अपनी छोटी जिम्मेदारी निभाए तो बड़े से बड़े बदलाव भी संभव है।
1: बिल्कुल जागृति जी, एक मजबूत राष्ट्र केवल सरकार से नहीं बनता, राष्ट्र की शक्ति उसके जिम्मेदार नागरिकों में होती है।
0: बिल्कुल।
1: देश के प्रति हमारा कर्तव्य है श्रोता साथियों कि हम कानूनों का पालन करें, ईमानदारी से अपना काम करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें और समाज में सद्भाव बनाए रखें। देशभक्ति केवल राष्ट्रीय पर्वों पर दिखाई देने वाली भावना नहीं है, सच्ची देशभक्ति रोजमर्रा के जीवन में जिम्मेदारी निभाने से दिखाई देती है। जो व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी से करता है वह राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देता है।
0: बिल्कुल
1: जागृति जी, आज हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अधिकारों के साथ कर्तव्य को समझना भी उतना ही हमारे लिए जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: यदि हम सड़क चाहते हैं तो हमें सड़क पर कचरा नहीं फैलाना है। यदि हम सुरक्षित समाज चाहते हैं तो हमें नियमों का पालन समानता से करना है। यदि हम अच्छी शिक्षा चाहते हैं तो हमें सीखने की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभानी होगी।
0: बिल्कुल।
1: यदि हम देश की प्रगति चाहते हैं तो हमें अपने काम में ईमानदारी और गुणवत्ता लानी होगी। इसलिए अधिकार हमें स्वतंत्रता देते हैं और कर्तव्य और स्वतंत्रता को जिम्मेदारी देते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, तो कहा गया है कि स्वराज का अर्थ केवल बाहरी शासन से स्वतंत्रता नहीं है। श्रोताओं, सच्चा स्वराज तब मजबूत होता है जब व्यक्ति अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार बनता है।
1: बिल्कुल,
0: अगर नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक है अंजलि, तो समाज की हर छोटी समस्या के लिए भी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गांव में लोग मिलकर जल संरक्षण कर सकते हैं, स्वच्छता रख सकते हैं, विद्यालय के विकास में सहयोग दें, स्थानीय संसाधनों की रक्षा करें और ग्राम सभा में सक्रिय भागीदारी निभाएं। ये भी स्वराज की भावना है। स्वराज की असली ताकत जिम्मेदार नागरिक है श्रोताओं, और जिम्मेदार नागरिक वही बनता है जो अपने कर्तव्य को समझता है। जीवन में हमेशा अनुकूल परिस्थितियां तो रहती नहीं है, कभी कभी आर्थिक कठिनाई आती है, कभी असफलता मिलती है, कभी आलोचना और कभी अनिश्चितता है। ऐसे समय में श्रोताओं, व्यक्ति के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो परिस्थितियों के सामने हार मान ले या अपने कर्म पर विश्वास रखकर आगे बढ़े।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ अंजलि कर्मयोग दूसरा रास्ता दिखाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कठिनाइयों को नजरअंदाज कर दिया जाए, बल्कि इसका अर्थ ये है दोस्तों कि कठिन परिस्थितियों में भी विवेकपूर्ण प्रयास जारी रखा जाए।
1: बिल्कुल,
0: कहा गया है कि परिस्थितियां हमारे रास्ते को कठिन बना सकती है, लेकिन हमारा कर्म हमारी दिशा तय करता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि कर्म योग तभी सार्थक है जब उसमें ईमानदारी हो।
0: बिल्कुल,
1: छोटा हो या बड़ा उसे पूरे निष्ठा से करना चाहिए। किसी काम को केवल इसलिए लापरवाही से नहीं करना चाहिए कि कोई हमें देख नहीं रहा। सच्चा चरित्र उस समय सामने आता है श्रोता साथियों, जब व्यक्ति बिना किसी दबाव और बिना किसी निगरानी के सही काम करता
0: है। बिल्कुल,
1: ईमानदारी से किया गया छोटा कर्म भी उस बड़े काम से श्रेष्ठ हो सकता है जिसमें स्वार्थ और दिखावा शामिल हो। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि आज की तेज जीवन शैली में तनाव और चिंता बढ़ती जा रही है। हम अक्सर जागृति जी भविष्य के परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं और वर्तमान कार्य पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। कर्मयोग हमें वर्तमान में सही कर्म करने की प्रेरणा देता है। यदि हम अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दें, अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करें और परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता न करें तो मन अधिक स्थिर रह सकता है।
0: जी हाँ।
1: इस प्रकार कर्मयोग केवल धार्मिक या दार्शनिक विचार नहीं बल्कि संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा भी है।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि कर्मयोग को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो अंत में कुछ बातें रह गई है, वो जरूर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और अंत में गीत से पहले आपसे कहा था कि कुछ छोटी मोटी बातें रहेगी वो आपसे जरूर करेंगे, तो कहना चाहेंगे आपसे कि श्री कृष्ण का कर्म योग हमें जीवन का अत्यंत सरल लेकिन गहरा संदेश देता है। अपने कर्तव्यों से मत भागो,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि सच्चा धर्म वही है जो कर्तव्य में दिखाई दे, सच्चा कर्म वही है जो समाज के काम है और सच्चा स्वराज वही है जहाँ हर नागरिक अपने कर्तव्य को समझ कर निभाए। श्री कृष्ण के कर्मयोग की यही सीख है कि कर्तव्य से पीछे नहीं हटना, कर्म में ईमानदारी रखना और अपने प्रयासों से जीवन को बेहतर बनाना।
1: बिल्कुल,
0: यही कर्तव्य बोध व्यक्ति को मजबूत बनाता है, परिवार को जोड़ता है, समाज को आगे बढ़ाता है, राष्ट्र को सशक्त करता है। कर्म ही हमारी पहचान बने और कर्तव्य ही हमारा सच्चा धर्म बने, यही श्री कृष्ण के कर्मयोग का सार है।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, बातें ढेर सारी हो गई हैं और आशा करते हैं श्रोता साथियों को आज के कार्यक्रम की बातें अवश्य पसंद आई होगी।
0: बिल्कुल,
1: तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्चर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, बेशी अनाज तकी ना तू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई बोनो, घर के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्ती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या के बारे में जो अक्सर शरीर में चुपचाप बढ़ती रहती है और हमें इसकी जानकारी तब होती है जब ये हमारे हृदय और रक्त वाहिकाओं के लिए खतरा पैदा करने लगती है। आज हम बात करने जा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की। श्रोता साथियों, कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में ये बात आती है कि कोलेस्ट्रॉल यानी कोई बहुत बड़ी बीमारी, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोलेस्ट्रॉल अपने आप में शरीर के लिए पूरी तरह बुरा नहीं है।
0: जी
1: हाँ। हमारे शरीर को कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। समस्या मनीषा तब पैदा होती है जब रक्त में कुछ प्रकार का कोलेस्ट्रॉल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। यही कारण है कि इसे कई बार छुपा हुआ शत्रु कहा जाता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लंबे समय तक कोई स्पष्ट लक्षण नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे रक्त वाहिकाओं में वसा जमा होने के कारण बन सकता है और हृदय संबंधित बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले ही छुपा शत्रु है कोलेस्ट्रॉल को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित खान पान, नियमित शारीरिक गतिविधियाँ, पर्याप्त नींद और अच्छी दिनचर्या है वो बहुत जरूरी है। श्रोता साथियों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अक्सर बुखार, सर्दी, खांसी, पेट दर्द या अन्य श्रोता साथियों दिखाई देने वाली समस्याओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे शरीर में कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं जो लंबे समय तक बिना किसी स्पष्ट संकेत के बनी रहती हैं। जैसा कि श्रोता साथियों, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना एक सामान्य समस्या है। हम देखते हैं अंजलि जी, कि कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही बहुत से लोगों को लगता है कि यह तो बहुत खराब बीमारी है। वास्तव में श्रोता साथियों, ऐसा नहीं है। शरीर को कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। यह शरीर में कोशिकाओं को बनाने, कुछ हार्मोन तैयार करने और जरूरी प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। समस्या तब पैदा होती है श्रोता साथियों, जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा असंतुलित हो जाती है।
1: बिल्कुल मनीषा, यही बात करें कि कोलेस्ट्रॉल आखिर है क्या। तो श्रोता साथियों, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का वसा युक्त पदार्थ है जो हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है। शरीर इसका इस्तेमाल कोशिकाओं को बनाने, कुछ हार्मोन बनाने और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं में करता है।
0: जी हाँ,
1: हमारे शरीर को मनीषा कोलेस्ट्रॉल का एक हिस्सा भोजन से मिलता है और काफी मात्रा में शरीर स्वयं ही बनाता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर संतुलित होना जरूरी है, क्योंकि श्रोता साथियों, रक्त में कोलेस्ट्रॉल को शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुँचाने का काम लिपोप्रोटीन करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इनमें मुख्य रूप से LDL, HDL के बारे में बात की जाती है।
0: जी हाँ,
1: यही बात करें कि कोलेस्ट्रॉल को छुपा शत्रु क्यों कहा जाता है। तो श्रोता साथियों, यह विषय सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि कई बार व्यक्ति बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। वह रोज काम करता है, खेत में जाता है, दुकान चलाता है, घर का काम करता है और उसे कोई खास परेशानी महसूस नहीं होती, लेकिन उसके रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता हुआ हो सकता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल अक्सर अपने आप कोई स्पष्ट संकेत नहीं देता, इसलिए केवल शरीर में कोई दर्द या कमजोर महसूस न होने के आधार पर यह मान लेना सही नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल सामान्य है। जब लंबे समय तक ये सारी चीजें बढ़ी रहती हैं, तो धमनियों में प्लाक बनने की प्रक्रिया जो है वो हो सकती है। इससे रक्त का प्रवाह प्रभावित हो सकता है और हृदय रोग, स्ट्रोक जैसे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकते हैं। इसलिए समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाना बहुत महत्वपूर्ण है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं। इसमें श्रोता साथियों, हमारी जीवन शैली, खान पान, शरीर का वजन, उम्र या श्रोता साथियों परिवार में पहले से चली आ रही समस्या भी हो सकती है। ये अगर बात करें अंजलि जी अस्वस्थ खान पान की, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि आजकल भोजन में तली भुनी चीजें और बहुत अधिक घी या तेल और वसा से युक्त पदार्थ लोग लेते हैं, जिसके कारण अंजलि जी हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का खतरा है वो और भी बढ़ सकता है। यदि श्रोता साथियों ऐसे भोजन का सेवन हम लगातार करते हैं या अधिक मात्रा में किया जाए और साथ ही हम देखते हैं कि संतुलित भोजन और शारीरिक गतिविधियां हैं वो कम हो जाए, तो हम देखते हैं कि रक्त और वसा के स्तर का नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, यही बात करें कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के क्या प्रमुख कारण हैं, तो हम देखते हैं कि खान पान के कारण शारीरिक गतिविधि की कमी, अधिक वजन और मोटापा, धूम्रपान और तंबाकू, मधुमेह और अस्वस्थ समस्याएं, आनुवंशिक कारणों के कारण हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ जाती है। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम में बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि हमने गीत से पहले ढेर सारी बातों को जाना था, यहीं अब बात करते हैं कि क्या कोलेस्ट्रॉल केवल बुजुर्गों को होता है। तो श्रोता साथियों, यह भी एक आम भ्रम है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल केवल 50 या 60 वर्ष की उम्र के बाद ही बढ़ता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल किसी भी उम्र में बढ़ सकता है। उम्र बढ़ने के साथ जोखिम बढ़ सकता है, लेकिन खानपान, जीवन शैली और आनुवंशिक कारणों और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के कारण कम उम्र के लोगों में भी समस्या हो सकती है। इसलिए उम्र चाहे कोई भी हो, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ अब बात करें मनीषा कि कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए क्या करें। तो श्रोता साथियों, पहला समाधान है थाली में बदलाव। हमारी थाली ही हमारी सेहत की पहली पाठशाला है।
1: बिल्कुल।
0: भोजन में सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, फल, सलाद और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ को उचित मात्रा में हमें शामिल करने की जरूरत है। बहुत अधिक तले हुए भोजन, अत्यधिक वसा युक्त खाद्य पदार्थों को रोजमर्रा का हिस्सा न बनाएं। जहां तक संभव हो, घर के ताजे

0: और संतुलित भोजन को प्राथमिकता दें। इसी के साथ मनीषा तेल की मात्रा का ध्यान रखें। कई बार हम सोचते हैं कि घर का खाना है तो जितना तेल डालेंगे उतना अच्छा स्वाद आएगा, लेकिन स्वाद के साथ स्वास्थ्य का संतुलन भी जरूरी है। तेल का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करना जरूरी नहीं है, बल्कि कुल मात्रा और भोजन की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना जरूरी है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि रोज थोड़ा सा चलना भी श्रोता साथियों जरूरी है इसकी, हम देखते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए श्रोता साथियों शारीरिक गतिविधियां बहुत महत्वपूर्ण होती है।
0: बिल्कुल,
1: हर व्यक्ति अपनी उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार गतिविधियां कर सकता है, जैसे कि श्रोता साथियों तेज चाल में चलना, हल्का व्यायाम करना, योग करना या रोज की जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो भी आप कर सकते हैं। इससे अंजलि जी हम देखते हैं कि हमारा शरीर है वो सक्रिय रहता है। साथ ही श्रोता साथियों हम देखते हैं कि तनाव और नींद का भी हमें ध्यान रखना है। स्वास्थ्य श्रोता साथियों केवल खान पान तक सीमित नहीं होता है, तनाव और नींद भी हमारी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: बिल्कुल,
1: लगातार तनाव में रहने से और पर्याप्त नींद न लेने से श्रोता साथियों हम देखते हैं कि हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए काम के साथ में आराम, पर्याप्त नींद, परिवार के साथ समय बिताना, सकारात्मक गतिविधियों में शामिल होना और मन को शांत रखने की कोशिश करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: इसी के साथ तंबाकू से दूर रहना है। श्रोता साथियों बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों से दूरी बनाना केवल कोलेस्ट्रॉल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शरीर के लिए जरूरी है। अपने वजन को स्वस्थ सीमा में रखने की कोशिश करें। इसके लिए हमें भूखे रहने के बजाय संतुलित भोजन और नियमित शारीरिक गतिविधियों को अपनाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर के अंदर चल रही समस्या को समय रहते पहचाना जाए। अगर डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल की जांच और अन्य स्वास्थ्य जांच की सलाह दी है तो उसे टाले नहीं। खासकर जिन लोगों को मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा या परिवार में हृदय रोग का इतिहास है, उन्हें अपने डॉक्टर से नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए सलाह लेनी चाहिए। इसी के साथ कुछ लोगों को जीवन शैली में बदलाव के साथ डॉक्टर दवा भी दे सकता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल की दवा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए। किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या इंटरनेट की सलाह पर दवा शुरू या बंद नहीं करनी चाहिए। अगर डॉक्टर ने दवा शुरू की है और बिना सलाह के उसे बंद कर देते हैं हम, तो हमें नुकसान हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए दवा की जरूरत व्यक्ति के कुल हृदय जोखिम और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए पूरी तरह से दुश्मन नहीं है, लेकिन इसका बढ़ा हुआ स्तर हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसकी खास बात श्रोता साथियों यह है कि कई बार यह बिना किसी स्पष्ट लक्षण के शरीर में बढ़ता जाता है। इसी कारण श्रोता साथियों इसे छुपा हुआ शत्रु भी कहा जाता है।
0: जी जी।
1: लेकिन डरने की जरूरत नहीं है साथियों, जागरूकता और सही जीवन शैली के साथ हम अपने स्वास्थ्य की अच्छी तरह देखभाल कर सकते हैं। संतुलित भोजन करें, तली भुनी चीजें हैं उनको कम खाएं, फल और सब्जियों को अपने भोजन का हिस्सा बनाएं, नियमित रूप से सक्रिय रहने के लिए शारीरिक गतिविधियां करें, धूम्रपान से दूर रहें और हमारे शरीर के लिए जो जरूरी गतिविधियां हैं वो हमें करनी है, जिससे अंजलि जी हम देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। और साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य की जांच भी हमें करवाते रहना है।
0: बिल्कुल मनीषा, हमारा शरीर हमें हमेशा स्पष्ट संकेत नहीं देता, इसलिए मुझे तो कोई परेशानी नहीं है कहकर जांच को टालना उचित नहीं है। अपनी थाली में संतुलन लाए, रोजमर्रा की जिंदगी में शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाएं, तंबाकू से दूर रहें, वजन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार समय समय पर आवश्यक जांच कराएं। याद रखिए कि स्वास्थ्य की रक्षा बीमारी आने के बाद नहीं, बीमारी से पहले ही की गई सावधानी से होती है। कोलेस्ट्रॉल को दुश्मन समझकर डरने की नहीं बल्कि उसे समझकर नियंत्रित रखने की जरूरत है। आज से एक छोटा सा संकल्प लें कि कम तला हुआ, ज्यादा संतुलित भोजन, कम बैठना, ज्यादा सक्रिय रहना, लापरवाही कम, स्वास्थ्य की जांच ज्यादा, क्योंकि स्वस्थ हृदय केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार के भविष्य के लिए जरूरी है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल।

0: श्रोता साथियों, इसी गीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्य प्रद बातें अब यही समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रही, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारशर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
1: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएंगा खेतर मंजर थे ही जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नो संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं माँ जंगल थकी जरूर बोने में रिश्तों है जे जंगल में हमसे हैं ये इन्हें रक्षा करे हैं तो आओ बोने की भागीदारी बढ़ावा ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल अनु भविष्य सुरक्षित करा बोना नी आवाज विकास नी असली पहचान है
4: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: साथियों, कृष्ण की सीख अपनाए, अन्याय के आगे न झुके, सत्य कर्म की राह पर चले, जन्माष्टमी के पावन पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाए।
1: बिल्कुल,
0: आप सभी को वाग रेडियो परिवार की तरफ से जन्माष्टमी के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: मैं हूं आप सभी के साथ दोस्तों, आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
0: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर।
1: स्वीकार कीजिएगा साथियों हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। और लेकर हाजिर हो चुके हैं दोस्तों कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है जन्माष्टमी के पावन पर्व को लेकर।
1: जी बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि त्योहार हमारे जीवन में केवल खुशियाँ उत्साह ही नहीं लाते, बल्कि वे हमें अपनी संस्कृति परंपराओं और जीवन के मूल्यों से भी जोड़ते हैं।
1: जी हाँ,
0: ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पर्व है श्री कृष्ण जन्माष्टमी।
1: बिल्कुल
0: जी हाँ श्रोता साथियों, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व हमें प्रेम, सत्य, साहस, कर्म और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देता है।
1: जी हाँ,
0: गाँव में इन दिन हम देखते हैं कि इस दिन मंदिरों की सजावट होती है, भजन कीर्तन होते हैं, झांकियां, मटकी सजाना और सामूहिक आयोजन का विशेष उत्सव देखने को मिलता है। आज कार्यक्रम में हम इस विषय पर ढेर सारी बातें करेंगे कि जन्माष्टमी का पावन पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है और किस तरीके से हमें कृष्ण भगवान जी के जीवन से सीख लेनी चाहिए।
1: जी हाँ,
0: बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं कि आज कार्यक्रम के माध्यम से हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व अंजलि जी मना रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि जब आधी रात को उम्मीद ने जन्म लिया तो वो दिन था श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। जी हाँ साथियों, अंधेरा कितना भी गहरा हो, उम्मीद का एक दीपक उसे चुनौती दे ही जाता है।
1: जी हाँ,
0: आज हम बात कर रहे हैं जन्माष्टमी के पावन पर्व की। तो दोस्तों, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। कृष्ण जन्म की कथा मथुरा की उस रात से जुड़ी हुई है अंजलि जी, जब अत्याचारी कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव के घर श्री कृष्ण का जन्म हुआ।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, आधी रात का वह प्रसंग आज भी जन्माष्टमी की पूजा और उत्सव का केंद्र है। हम देखते हैं कि जन्माष्टमी जो है वो पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाई जाती है।
1: जी जी,
0: क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अंजलि जी, इस मौके पर लोग जो है वो उपवास रखते हैं, दिन भर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, मंदिरों को फूलों, रंग बिरंगी रोशनी और सुंदर सजावट से सजाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप वाली मूर्ति को झूले में सजाया जाता है साथियों।
1: बिल्कुल कशिश।
0: साथ ही जन्माष्टमी की विशेष बात यह भी है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था, इसलिए रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।
1: जी हाँ कशिश, धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था।
0: जी जी।
1: उनका जन्म मथुरा में अत्याचारी कंस के शासन के समय हुआ। श्री कृष्ण का जन्म श्रोता साथियों केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक माना जाता है।
0: बिल्कुल।
1: श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। बचपन से ही उनके सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन उन्होंने कभी साहस नहीं छोड़ा। यही संदेश हमें भी मिलता है कि परिस्थितियां हमारे जीवन में कितनी भी कठिन क्यों न हो, सही रास्ते पर अगर हम चलते रहें तो हिम्मत भी बनाकर हमें रखनी होगी।
0: जी हाँ।
1: साथियों, जन्माष्टमी का महत्व केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, यह पर्व समाज को एक साथ जोड़ने का अवसर भी देता है। गांव में लोग मिलकर मंदिरों की साफ सफाई करते हैं, सजावट करते हैं, भजन गाते हैं, बच्चों के लिए श्री कृष्ण की झांकियां तैयार करते हैं। इससे सामूहिक सहयोग और आपसी भाईचारा मजबूत होता है।
0: बिल्कुल।
1: कई जगह बच्चे कृष्ण और राधा का रूप धारण करते हैं, इससे बच्चों को अपनी लोक संस्कृति और परंपराओं को समझने का अवसर मिलता है।
0: जी हाँ,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि श्री कृष्ण के जीवन से हमें कई सीख मिलती है। श्री कृष्ण का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है, जैसे कि पहली सीख है कर्म करते रहो। जी हाँ श्रोता साथियों, भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को समझाया है कि हमें अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करना चाहिए और परिणाम की चिंता में अपना वर्तमान खराब नहीं करना है। दूसरी सीख है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। जी हाँ, श्री कृष्ण ने अत्याचार और अन्याय का विरोध किया। आज भी हमें अपने आसपास होने वाले गलत कार्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तीसरी सीख है प्रेम और मित्रता की। जी हाँ श्रोता साथियों, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें बताती है कि सच्चे रिश्ते धन दौलत से नहीं, बल्कि कशिश विश्वास और प्रेम से बनते हैं।
0: बिल्कुल।
1: चौथी सीख है बुद्धिमानी से समस्या का समाधान। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर समस्या का समाधान केवल शक्ति से नहीं, बल्कि धैर्य, समझदारी और सही निर्णय से लिया जा सकता है।
0: बिल्कुल साथियों, जरा सोचिए कि एक तरफ जेल के चार दीवारी, दूसरी तरफ अत्याचार का शासन, चारों ओर अंजलि जी भय का माहौल।
1: बिल्कुल।
0: और उसी अंधकार के बीच जन्म लेता है एक नन्हा बालक। श्रोता साथियों, यही तो श्री कृष्ण की बड़ी सीख है कि परिस्थितियां हमारे जन्म की कहानी लिख सकती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हमारा कर्म हमारे जीवन की कहानी लिखता है। हम देखते हैं कि कृष्ण केवल भगवान नहीं, जीवन का संवाद है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि दोस्तों, कृष्ण जी का जीवन बहुत ही अनोखा है। वे कभी माँ यशोदा के नटखट कन्हैया हैं, तो कभी ग्वाल बालों के मित्र हैं, कभी गोपियों के प्रिय हैं, तो कभी अत्याचार के सामने खड़े होने वाले योद्धा हैं। और महाभारत के मैदान में वही कृष्ण अर्जुन के सारथी बन जाते हैं।
1: जी जी।
0: अंजलि जी, यही बात कृष्ण को आम आदमी के बहुत करीब ले आती है। हमारे गाँव का बच्चा जब मटकी देखकर मुस्कुराता है, हमारी दादी जब कान्हा की बाल लीला सुनाती है साथ

0: साथियों, किसान जब गाय बछड़ों के बीच दिन बिताता है, जब महिलाएं मिलकर कृष्ण जन्म की झांकी सजाती है और जब मंदिरों में भजन गूंजते हैं, तब श्री कृष्ण केवल किसी मूर्ति में नहीं होते।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा बताया जाता है कि कृष्ण हमारी संस्कृति की सांसों में बसे हुए हैं। हम जैसा कि जानते हैं श्रोता साथियों कि श्री कृष्ण का जो जन्म है वो मथुरा में हुआ था और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर अंजलि जी दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है।
1: जी बिल्कुल,
0: ऐसा कहा जाता है कि जन्माष्टमी के अवसर पर कई स्थानों पर दही हांडी का आयोजन किया जाता है। इसमें श्रोता साथियों एक मटकी को ऊंचाई पर लटकाया दिया जाता है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर मानव पिरामिड बनाते हैं और मटकी फोड़ते हैं।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, ये परंपरा भगवान श्री कृष्ण की माखन चुराने वाली बाल लीलाओं से जुड़ी हुई है। दही हांडी के कार्यक्रम में लोगों में उत्साह रहता है, साहस बना रहता है और एकता की भावना भरपूर रूप से दिखाई देती है।
1: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान रहे हैं, आगे भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसी तरह बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर ढेर सारी बातें गीत से पहले भी चल रही थी साथियों, अब यहीं हम सभी का आपसे ये सवाल है कि वर्तमान के समय में कंस कौन है। दोस्तों, अगर आज कृष्ण हमारे बीच होते तो क्या वे केवल कंस से लड़ते? शायद नहीं दोस्तों, क्योंकि आज का कंस किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है अंजलि जी।
1: बिल्कुल,
0: आज के कंस अलग अलग हैं, जैसे कि नशा, लोभ, घृणा, अंधविश्वास, बेटा बेटी में भेदभाव, प्रकृति का विनाश और वह डर जो हमें सही बात कहने से रोकता है।
1: बिल्कुल कशिश,
0: अंजलि जी, कृष्ण की कथा हमें ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि हमारे समाज में कौन सी बुराई है जिसे हम सभी को मिलकर हराना है। अगर हमारे गाँव में कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उस बच्चे को शिक्षा देना भी श्री कृष्ण का संदेश है। अगर किसी घर में बेटी बेटी को कम समझा जाता है तो उस सोच को बदलना भी कृष्ण का संदेश है।
1: बिल्कुल,
0: अगर पड़ोसी से छोटी सी बात पर वर्षों से बोलचाल बंद है तो हाथ बढ़ाकर मित्रता करना भी कृष्ण का संदेश है।
1: जी हाँ,
0: अगर गांव में पानी की कमी है, पेड़ कट रहे हैं, गंदगी फैल रही है तो मिलकर अपने गांव को स्वच्छ और हरा भरा बनाना भी श्री कृष्ण की भक्ति है। क्योंकि पूजा केवल दीप जलाने का नाम नहीं होती साथियों, पूजा तब पूरी होती है जब हमारे कर्मों से किसी दूसरे के जीवन में उजाला पैदा होता है।
1: बिल्कुल कशिश, जन्माष्टमी बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का अच्छा अवसर है। माता पिता बच्चों को केवल यह न बताएं कि कृष्ण कौन थे, बल्कि यह भी समझाएं कि उनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों को बताएं कि श्री कृष्ण का बाल रूप हमें आनंद और सरलता का संदेश देता है, जबकि गीता में उनका संदेश हमें जिम्मेदारी और कर्म का महत्व समझाता है।
0: जी जी,
1: त्योहार मनाते समय बच्चे की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। सजावट में बिजली के तारों, दीपक और भीड़ के बीच विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हमारे गाँव में त्योहार तभी सार्थक बनते हैं जब उसकी खुशियां जो है वो सभी तक पहुंचे।
0: बिल्कुल,
1: जन्माष्टमी के अवसर पर परिवारों, बुजुर्गों और अकेले रहने वाले लोगों को भी उत्सव में शामिल करें। सामूहिक कार्यक्रमों में स्वच्छता बनाए रखें, प्लास्टिक और कचरे को इधर उधर न फेंके, परंपरा के साथ पर्यावरण की जिम्मेदारी भी निभाएं, यही हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल,
1: जन्माष्टमी केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला पर्व भी है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें आए तो घबराना नहीं चाहिए, अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए, अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए।
0: जी जी।
1: इस जन्माष्टमी पर कशिश हम केवल मंदिरों में दीपक न जलाएं, बल्कि अपने भीतर भी सच्चाई, प्रेम, करुणा, साहस का दीप जलाएं, परिवार में प्रेम बढ़ाएं, समाज में भाईचारा मजबूत करें और अपने गाँव में स्वच्छ और सहयोगी बनने का संकल्प लें।
0: जी हाँ,
1: इसी संदेश के साथ कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जहाँ कर्म में ईमानदारी होती है, व्यवहार में प्रेम होता है और सोच में सत्य होता है, वही श्री कृष्ण की सीख जो है वो जीवित रहती है। और हमें हमारे जो श्री कृष्ण भगवान है उनकी सीख को हमेशा अपने जीवन में जीवित रखने की जरूरत है।
0: जी
1: क्योंकि
0: हाँ,
1: उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमेशा कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो।
0: बिल्कुल,
1: बहुत सी बार कशिश हम हमारे जीवन में ये सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो हमें इससे लाभ क्या होगा।
0: जी जी,
1: लेकिन लाभ के बारे में न सोचकर सिर्फ हमारे जो कर्तव्य है जो हमें करने चाहिए, जैसा कि हमारे माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है, गुरुजन के प्रति बनता है, बच्चों के प्रति बनता है।
0: बिल्कुल,
1: अगर हम लड़की हैं और शादी कर कहीं जा रहे हैं तो ससुराल के प्रति हमारे जो फर्ज बनते हैं, अगर हम उन्हें पूरे कर्म के साथ, सच्ची इच्छा के साथ निभाते हैं तो उन कर्मों का फल हमें वहीं पर रहकर मिलता है। हम देखते हैं कि अगर हम किसी अलग परिवार में गए हैं तो वहां पर हमारा जो व्यवहार है वो अच्छा होगा, तो अगले इंसान का व्यवहार भी हमारे लिए अच्छा होगा।
0: बिल्कुल,
1: तो ये हमारे कर्मों की बात है, हमारे व्यवहारों की बात है कि हम किस तरीके से हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में इन सारी चीजों को लाते हैं जिनसे हमारा जो जीवन है वो सुंदर बनता है।
0: जी हाँ,
1: और अगर आज हम हमारे जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें धैर्य, साहस, करुणा, संवेदनशीलता, भावनात्मक जो चीजें होती हैं, इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है, तभी हम हमारे जीवन को सुंदर बना सकते हैं। अगर ये गुण हमारे अंदर नहीं रहते हैं, हमारे अंदर अहंकार, घृणा, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, या किसी को इस बात पर कैसे टोक दूं, या किसी को इस बात पर कैसे ताना मार दूं, ऐसी चीजें रहती हैं, तो हम देखते हैं कि हम कभी उस समय तो खुश रह सकते हैं, लेकिन अगले ने अगर हमें कुछ वापस कह दिया तो हमें फिर से दुख हो जाएगा।
0: जी
1: हम
0: हाँ,
1: उदास हो सकते हैं, तो इनसे हमारी जीवन की खुशी नहीं है। हमारी खुशी है धीर, साहस, करुणा और संवेदनशीलता और भावनात्मक चीजों से अगर हम इन्हें अपनाते हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हम गुजार सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, ये बात आपने सही कही और इससे हमारे मन में सकारात्मकता भी आती है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि अगर हम सामने वाले के प्रति अपने मन में थोड़ी सी भी कटुता रखते हैं तो श्रोता साथियों हम अपने शरीर में, हम अपनी कह सकते हैं कि चरित्र में नकारात्मकता को ग्रहण कर रहे होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और सामने वाले का अगर आप सम्मान करते हैं श्रोता साथियों, तो आपका जीवन सकारात्मकता से भरपूर रहेगा।
1: जी हाँ।
0: और भगवान श्री कृष्ण भी हमें यही सिखाते हैं, क्योंकि अंजलि जी मानव जीवन को भगवान श्री कृष्ण ने सही दिशा देने के लिए अनेक शिक्षाएं दी है।
1: जी जी।
0: उन्होंने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करते रहने चाहिए। उनकी शिक्षाएं साथियों हमें सत्य, धर्म, प्रेम, दया और अच्छे कर्मों का मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण ने अंजलि जी ये भी सिखाया है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां आने पर व्यक्ति को कभी विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, बल्कि धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना है। जन्माष्टमी केवल भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाने का त्योहार नहीं है साथियों, बल्कि ये बुराई पर अच्छाई की विजय का भी प्रतीक है। श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का अंत करके लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया था। यह पर्व हमें सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं। ये बातें निरंतर आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने कशिश ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि जन्माष्टमी हमारे लिए केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, परंपराओं और जीवन मूल्यों को समझने और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण अवसर है। इस पर्व की खुशियाँ तब और हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाती है जब हम इसके पीछे छिपे संदेश को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें बताता है कि कठिन परिस्थितियां मनुष्य की राह को रोक नहीं सकती, यदि उसके भीतर धैर्य, साहस और सही निर्णय की क्षमता हो। जीवन में कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती है कशिश, जहाँ आसान रास्ता चुनना सबसे आकर्षक लगता है, लेकिन सही रास्ता चुनने के लिए आत्मविश्वास और दृढ़ता की होती है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं में हम देखते हैं कि परिवार, मित्रता, कर्तव्य, प्रेम और सामाजिक जिम्मेदारी सभी महत्वपूर्ण स्थान दिखाई देते हैं। इसलिए जन्माष्टमी के अवसर पर हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे घरों में बच्चों को केवल त्योहारों की कहानी न सुनाई जाए, बल्कि उनके मूल संदेश को भी सरल भाषा में समझाया जाए, उन्हें बताया जाए कि अच्छे संस्कार केवल किताबों या धार्मिक कथाओं में नहीं होते, बल्कि हमारे वार, बोलचाल और दूसरों के प्रति किए गए छोटे छोटे अच्छे कामों में दिखाई देते हैं। हमारे ग्रामीण और आदिवासी समाज में कशिश त्योहार सामाजिक सामूहिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इन अवसरों पर लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, मिलजुल कर आयोजन करते हैं और अपनी लोक परंपराओं को जीवित रखते हैं। इसलिए जन्माष्टमी को सामाजिक एकता और आपसी सहयोग का अवसर भी बनाया जा सकता है। गाँव के बच्चे, युवा महिलाएं और बुजुर्ग मिलकर कार्यक्रम कर सकते हैं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दें और अपनी स्थानीय परंपराओं को नई पीढ़ी से जोड़ें। साथ ही त्योहार के दौरान स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यावरण का ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी हमें निभानी चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, अब यही अगर यशोदा का कृष्ण और हमारे घर के बचपन को लेकर हम बात करें, तो जैसा कि साथियों कृष्ण की बाल लीला याद आती, सबसे पहले हमें कौन याद आता है? वो है माँ यशोदा। कृष्ण की शरारतें, माखन की चोरी, ग्वाल बालों के साथ खेलना और माँ यशोदा का अपने लल्ला को डांटना, इन कथाओं को केवल मनोरंजन नहीं है श्रोता साथियों, इनमें बचपन की वह दुनिया है जहाँ बच्चे मिट्टी में खेलते थे, दोस्तों के साथ दौड़ते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे और गांव की गलियों में हंसते थे। लेकिन आज हमारे बच्चों के हाथ में क्या है? बांसुरी नहीं बल्कि मोबाइल।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोता साथियों, क्यों ना इस जन्माष्टमी पर मिलकर हम सभी एक संकल्प लें कि हर दिन बच्चों के साथ थोड़ा समय हम खेलेंगे।
0: जी जी।
1: उन्हें श्री कृष्ण की और प्रेरक कहानियां सुनाएंगे, उनसे बातें करेंगे, उन्हें प्रकृति से जोड़ने के प्रयास करेंगे।
0: जी जी।
1: क्योंकि अंजलि जी, बच्चे केवल स्कूल की किताबों से नहीं सीखते, वे घर के व्यवहार से भी सीखते हैं, वे समाज को देखकर सीखते हैं। अगर हम दोस्तों उन्हें प्रेम देंगे तो वे प्रेम सीखेंगे।
0: बिल्कुल।
1: अगर हम उन्हें सम्मान देंगे तो वे सम्मान को सीखेंगे। अगर हम उन्हें सत्य और जिम्मेदारी का रास्ता दिखाएंगे तो वही बच्चे कल का बेहतर समाज बनाएंगे। अंजलि जी,
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। आज के समय में जब बच्चे और युवाओं पर पढ़ाई, प्रतियोगिता और भविष्य को लेकर दबाव बढ़ रहा है, तब श्री कृष्ण की शिक्षाएं उन्हें संतुलित सोच रखने की प्रेरणा दे सकती है। सफलता मिलने पर अहंकार न करना और कठिन समय आने पर निराश न होना, यह जीवन की ऐसी सीख है जिसकी जरूरत हर उम्र के व्यक्ति को है। इस जन्माष्टमी हम अपने भीतर एक सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लें, घर में प्रेम और सम्मान बढ़ाएं, रिश्तों में विश्वास बनाए रखें, जरूरतमंद की मदद करें और समाज में किसी भी तरह के भेदभाव या अन्याय के खिलाफ सामूहिक भूमिका निभाएं। त्योहार की सच्ची खुशी तभी है जब उसकी रोशनी हमारे अपने जीवन के साथ साथ हमारे आसपास रहने वाले लोगों के जीवन में भी पहुंचे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हमेशा नहीं होती, लेकिन परिस्थितियों में हमारा व्यवहार, हमारा निर्णय और हमारी सोच हमारे हाथ में होती है। इसलिए यही सोच अच्छे कर्म और मानवीय मूल्यों के साथ आगे हमें बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और यही इस पर्व की सबसे सुंदर सीख भी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही अगर बात करें माखन चोरी से मिलने वाली सीख की, तो श्रोता साथियों, कृष्ण की माखन चोरी की कथा बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आती है, लेकिन इसके पीछे एक प्यारी सामाजिक तस्वीर भी है, जैसे कि गांव, घर, पड़ोसी, मित्र, गाय, दूध, दही और सामूहिक जीवन। श्रोता साथियों, कृष्ण की बाल लीलाएं हमें उस सामुदायिक जीवन की याद दिलाती है जहाँ खुशियाँ अकेले नहीं मनाई जाती थी।
0: जी जी,
1: आज हम सबके घरों में दरवाजे तो हैं, लेकिन क्या हमारे दिलों के दरवाजे बंद हो गए हैं? साथियों, जन्माष्टमी पर हम उन्हीं दरवाजों को खोलते हैं।
0: बिल्कुल,
1: पड़ोसी से बातें करेंगे, रूठे हुए मित्रों को मनाएंगे, घर के बुजुर्गों के साथ बैठेंगे और बच्चों की बातें सुनेंगे।
0: जी हाँ,
1: साथ ही अपने समुदाय में ऐसा वातावरण बनाएंगे अंजलि जी जहाँ कोई व्यक्ति अकेला महसूस न करे। क्योंकि श्रोता साथियों, कृष्ण की बाल कथाओं में गायें हैं, यमुना है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है, वर्षा है और गोवर्धन भी है। इसलिए जन्माष्टमी प्रकृति से जुड़ने का अवसर भी बन सकती है।
0: जी,
1: हम अपने गांव की नदी, तालाब, कुएं और पेड़ों को बचाएं दोस्तों। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, तालाब में कचरे न डालें, पशुओं के प्रति संवेदनशील रहें और बच्चों को बताएं कि प्रकृति हमारी संपत्ति नहीं, हमारी जिम्मेदारी है।
0: जी हाँ,
1: अगर हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कृष्ण की धरती से भी प्रेम हम सभी को करना होगा।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, जन्माष्टमी का उत्सव हमें अपनी संस्कृति के उस खूबसूरत विरासत से जुड़ता है जो पीढ़ियों से हमारे समाज को दिशा देती आई है।
1: बिल्कुल,
0: आज जब जीवन की रफ्तार तेज हो रही है श्रोता साथियों और पारंपरिक मूल्यों से दूरी बढ़ती जा रही है, ऐसे पर्व हमें ठहर कर अपनी जड़ों को याद करने का अवसर देते हैं।
1: जी जी।
0: हमें यह समझने की जरूरत है कि परंपराएं तभी जीवित रहती हैं जब उनमें नई पीढ़ी की भागीदारी हो और बच्चे उनके अर्थ को समझें। इस अवसर पर गांव और परिवार मिलकर ऐसा वातावरण बना सकते हैं जिसमें उत्सव के साथ सीख भी जुड़ी हो। बच्चे कृष्ण की झांकी बनाएं, लोकगीत और भजन सीखें, बुजुर्ग उनसे जुड़ी कहानियां सुनाएं, युवा आयोजन की जिम्मेदारी संभालें। इस तरह इस एक त्योहार को केवल एक दिन का कार्यक्रम न रखें बल्कि पीढ़ियों के बीच संवाद का माध्यम भी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जन्माष्टमी हमें यह भी अवसर देती है कि हम अपने रिश्तों को समय दें, परिवार में साथ बैठना, एक दूसरों की बात सुनना, रूठे हुए व्यक्ति को मनाना और जरूरत के समय किसी के साथ खड़ा होना, यही वे छोटे काम हैं जो समाज में अपनापन पैदा करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उत्सव की असली खुशी महंगी सजावट या बड़े आयोजन में नहीं बल्कि लोगों के चेहरों पर आई मुस्कान, आपसी जुड़ाव में दिखाई देती है। इस पर्व को दिखावे से अधिक सादगी, सहयोग और सद्भाव के साथ मनाएं।
1: जी
0: बच्चों
1: हाँ।
0: को सुरक्षित और आनंदपूर्ण वातावरण दें, बुजुर्गों का सम्मान करें, जरूरतमंद जो व्यक्ति हैं, जो परिवार हैं, उनका उत्साह बढ़ाएं और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। अपनी लोक संस्कृति और परंपराओं को सम्मान देते हुए उन्हें आगे अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का प्रयास करें।
1: बिल्कुल,
0: त्योहार कैलेंडर की तारीख भर नहीं होता, वे हमारी सामूहिक स्मृति, हमारे संस्कृति और हमारे रिश्तों को जोड़ने वाली कड़ी होते हैं। जन्माष्टमी की यही भावना हमारे घरों से निकलकर पूरे समाज में प्रेम, सहयोग और सकारात्मक वातावरण बना सकती है।
1: जी हाँ,
0: इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हम कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारा सा गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से विदा लेना चाहेंगे
1: जी हाँ।
0: और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। और श्रोता साथियों, आप सभी को वागड़ रेडियो परिवार की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, आप भी हमारे कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं, आप भी आपके फरमाइश के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप भी आपकी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, अब हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जलालाबाद वेस्ट से। फिल्म का नाम है लगान, गीत के बोल है राधा कैसे न जले। इस गीत को आवाज दी है आशा जी ने और उदित नारायण जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। जमशेदपुर से जुड़ना चाह रहे हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया और लक्षा जी भाटिया। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। तो आइए श्रोता साथी सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है लगान, गीत के बोल है राधा कैसे न जले। इस गीत को आवाज दी है आशा जी ने और उदित नारायण जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ चीला कोरवा सी। फिल्म का नाम है नमक हलाल। गीत के बोल हैं पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है चूरी छत्तीसगढ़ चीला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु, बब्बन मीनो, काना हरि प्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं मलियाना सरधाना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन। इस गीत के अनुरोध करता है पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रमेश कुमार झांझोरिया, गीता रानी झांझोरिया, गंदीप झांझोरिया, गुड्डू जी झांझोरिया। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है नमक हलाल। गीत के बोल है पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

प्रिय श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंजाब से। फिल्म का नाम है मालिक, गीत के बोल हैं ए रे कन्हैया किसको कहेगा तुमैया। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश जी मल्होत्रा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं मजनू का टीला से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही जी मलिक। इस गीत के अनुरोध करता है भागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नुति नूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी, रामनंद कश्यप। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं रामनाथ प्रजापति और श्रीमती सुमन देवी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे सी गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है खुद्दार। गीत के बोल ही मच गया शोर सारी नगरी में। इस गीत की फरमाइश करता है बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रसाद राजेंद्र जी वर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रही है जमशेदपुर से, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना जी भाटिया। इस गीत के अनुरोध करता है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, निट्टू लक्ष्म मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ रहे हैं पीयूष सिक्का, कोनिका सिक्का, डुग्गू सिक्का, भाविका जी सिक्का। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं झारखंड से, मोहम्मद यासिन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया जी। इस गीत के अनुरोध करता है गंजू द्वारा से शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फिजाद खान, अनु खान। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं कोपर गांव से रामचंद्र रावकर, अनु, रोहित और आरती जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही मच गया शोर सारी नगरी में। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

सारी नगरी रे आया फिर रज का पाका संभाल तेरी।

जब उलट देगा तोरी गगरी आगे पीछे डगरी रे। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया फिरज का पाका संभाल तेरी गगरी रे।

0: आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कुंभार गली कोलगांव से। फिल्म का नाम है सौदागर, गीत के बोल हैं नटखट बंसी वाले। इस गीत की फरमाइश करता है पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं सदर बाजार मारवाड़ा भिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जी नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक जी चौहान। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं खड़वासी अब्दुल गफार डावर जी, अब्दुल हक डावर जी, जिया हक डावर जी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं सोहन जोशी। इस गीत के अनुरोध करता है जाफराबाद से सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, जंगुताई राज यादव, सचिन देशमुख, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, हर्षिता देशमुख, सानवी जी देशमुख और प्रणाला जी देशमुख। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सूरज, राजपाज पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष्य सोहिनी मोहिनी, ऋतिक बलवीर सिंह जी। इस गीत के अनुरोध करता है नेहरू चौक पेठण से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रशांत जाधव, सोनम जाधव, बेबी सिया जाधव। जलाना शहर से जुड़ना चाह रहे हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जी जाधव, एकता जाधव और संगीता जी जाधव। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है सौदागर, गीत के बोल हैं नटखट बंसी वाले। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।
1: सभी नासी हिम कर भानु कृषाण प्रकाशी सर्वभूत

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है मुकाबला, गीत के बोल हैं तीन बत्ती वाला गोविंदा। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने और किशोर कुमार जी ने। इस गीत का अनुरोध करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। कुरावली से साहिद हुसैन अंसारी, नरसिंह अंसारी, नूरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेक जी अंसारी। मुरादाबाद से जुड़ना चाह रही हैं अजीत कसाना, माया दी, वीर ऋतिक और आदित्य जी कसाना। इस गीत के अनुरोध करता है आकोट से विनायक भिंडे, श्रीमती मंगला जी भिंडे, शुभम जरिए, पवन जी और सजीव जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेमांश कुमार चंदन, सोगा और मंद्रोड जी। इस गीत का अनुरोध करता है महाराष्ट्र से रूपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रतीत जी संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है मुकाबला, गीत के बोल हैं तीन बत्ती वाला गोविंदा। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने और किशोर कुमार जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत को।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है आकोट महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है हेलो ब्रदर, गीत के बोल हैं चांदी की डाल पर सोने का मोर। इस गीत की फरमाइश करता है नितिन पाटिल, नंदिनी जी पाटिल। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, पंजाब से सुभाष गोदरा, विमला गोदरा, इंदु पार्वती, हिमांशु जी गोदरा। इसी भी जुड़ना चाह रही मलियाना सरधाना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन। इस गीत के अनुरोध करता है बुलेंदखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी जी विश्वकर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है अमरावती महाराष्ट्र से श्याम केटे, वंदना केटे, कार्तिक केटे, भाविका केटे और केटे परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती से हीरामणि शेंडे और सिद्धार्थ जी शेंडे। पंडितपुर सिटी से जुड़ना चाह रहे हैं प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, प्रशि सिंधे और कृष्णा घोड़के जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं चांदी की डाल पर सोने का मोर। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

अयश्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जलालाबाद वेस्ट से। फिल्म का नाम है हम साथ साथ हैं, गीत के बोल हैं मैया यशोदा। इस गीत की फरमाइश करता है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी निमित आहूजा जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रही हैं अमरावती महाराष्ट्र से, हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर, रामेकर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं दुलापुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरा, नरगिस जी खातून। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। इस गीत के अनुरोध करता है सगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांश जी वर्मा। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं नरवेल महाराष्ट्र से पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर से जुड़ना चाह रहे हैं नारायण इगले, सोपान इगले, आशीष महेकर जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है हम साथ साथ हैं, गीत के बोल हैं मैया यशोदा। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। स्वागत है साथियों आप सभी का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रमों में फरमाइश का सिलसिला सुबह 11 बजे से बना हुआ था हमारा आप सभी के साथ में, जिसे आप सभी सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा पटेल के साथ में। और अब आप इसे आगे सुनने वाले हैं मेरे साथ, यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में। तो दोस्तों, फरमाइशों के सिलसिले को यूं ही आगे बढ़ाते हुए मैं जुड़ना चाहूंगी आप सभी के साथ में और बढ़ना चाहूंगी अगली फरमाइश की गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है धनोरी तेलीवाला से। फिल्म का नाम है लगान, गीत के बोल हैं राधा कैसे ना जले। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू जी और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। जुड़ रहे हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा कुश मुणत जी। जुड़ना चाह रहे हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं राधा कैसे ना चले। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसे कि लगान फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत था राधा के सेना चले, इसी गीत के बाद मैं फिर से बढ़ना चाहूँगी अगले फरमाइश के गीत की ओर। अगले फरमाइश का गीत आया है पंजाब से, फिल्म का नाम है धड़कन, गीत के बोल हैं तुम दिल की धड़कन में रहते हो। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी जी और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी जी। और भी हमारे दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, विवेक श्रीवास, बीबी आयुष श्रीवास, छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो मानस राज, छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन जी, पोटाकला दुर्ग से संजय साहू, श्वेता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष जी। साथी हैं और भी जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं राजस्थान भोपालगढ़ से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं तुम दिल की धड़कन में रहते हो। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

करो मुझसे इतनी मोहब्बत देव, बहुत तड़पोगे, बेवजह तकलीफ होगी तुम्हें। आखिर ऐसा क्या है मुझमें, क्या है मुझमें?

0: देव बहुत हो गया, अब बंद भी करो मेरी तारीफ।
1: रहते हो बस तुम रहते हो।
2: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की। और अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है नवाशहर पंजाब से। फिल्म का नाम है संजोग, गीत के बोल हैं यशोदा का नंदलाला। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं नवाशहर पंजाब से। गगनदीप थाटी, रीता कुमारी थांडी, प्रियंका प्रशांत थाटी, वामिका जी, प्रियंका थांडी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी दोस्त हमारे जाकर राजस्थान से, शमुदयाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत खट्टक, सुंदरलाल खट्टक, योगेश कुमार खट्टक, दीपक कुमार खट्टक, कुमारी पूजा खट्टक। जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से हैं नरेंद्र गंगेश्वरी नेताम, डोमेंद्र नेताम, कामेश नेताम, चंचल नेताम, माहिर नेताम जी। साथ ही जुड़ना चाह रहे हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं येताला महाराष्ट्र से, शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, शुभम प्रसाद जयसवाल, अरणय जयसवाल, राखी जयसवाल, तृप्ति जयसवाल, दुर्गेश्वरी जयसवाल जी। दादरी गिर भीमानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, सवन्या गोस्वामी जी। सहारनपुर से हैं सैयद मसूर, साइना अक्सा, नजमा, आफिया इब्राहिम, सद्दाम जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं उत्तराखंड से, ताजवंत अंसारी, गुलाम शाबी राही, महराज जहां। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं यशोदा का नंदलाला। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था यशोदा का नंदलाला, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है बीड़ शहर महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है बदला गिल। गीत के बोल हैं, दोस्तों, मच गया शोर सारी नगरी में, शोर मच गया शोर, देखो आया माखन चोर। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, बीड़ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, जयश्री मेहत्रा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टहुल, बीपी कुलथे जी और भी दोस्त हमारे इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं, जो सुनना चाहते हैं इसी गीत को। श्रोता साथियों, नाम बताना चाहूंगी, जुड़ना चाह रहे हैं शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकर, रजन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना हनी, यश और सोम्या जी इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। और भी दोस्त जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जज्जर हरियाणा से रिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, बिट्टू भाटिया, रजत मयंक भाटिया इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। और भी श्रोता साथी जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, नाम बताना चाहूंगी, सोना नगर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हैं प्रेम साय रजवाड़े, सोमार साय रजवाड़े, भगत हेमंत कुमार, खिलावन सिंह पेकरा जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं गनगोला दत्तागंज से इसरन खान, सायरा बेगम, शैफूफ खान, राहिन खान, शहबाज खान, शेफ खान, ईशान खान। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है, शोर मच गया शोर, तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जी का और तो
1: तीन चार राजू बड़ा होशियार, एक दो तीन चार राजू बड़ा होशियार, होशियार होशियार गिन जाना मेरे यार, होशियार होशियार।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, श्रोता साथियों बताना चाहूंगी, राहुल नगर यवतमाल से आया है। फिल्म का नाम है कोई मिल गया। गीत के बोल हैं श्रोता साथियों कि कोई मिल गया। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं राहुल मनवर, सल्ला मनवर, विशाल मनवर, चिन्हित मनवर, रोशनी मनवर, प्रियांशी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी दोस्त हमारे जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जनकपुरी सहारनपुर से हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलेज डिकेस्ट्रो जी। अमरावती महाराष्ट्र से हैं सिद्धार्थ गुणाने, अर्चनाताई गुणाने, हीरामन शिंदे, प्रेम प्रसिद्धि, प्रतिभा गुणाने जी। इसी बीच साथी जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्र रामेकर, रुचिर रामेकर और रामेकर परिवार के सदस्यगण जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, नेहा निशा नामदेव, छनुलाल श्रीवास जी। कौरबा से हैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषनु, बबन मनहुकाना ठाकुर, हरिप्रिया जी। उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं शरद चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू चौरसिया, लल्ला चौरसिया, शिवा, शिवानी चौरसिया, पवन गोड़ और योगेंद्र नायक जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी श्रोता साथी जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, आपको नाम बताना चाहूंगी। जुड़ना चाह रहे हैं छनुला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजु योगिता श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं कोई मिल गया। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की। और अगली फरमाइश का गीत समस्तीपुर बिहार से आया है साथियों। फिल्म का नाम है किसना, गीत के बोल हैं वो किसना है। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं मीरा सिंह, ज्योति सिंह बिहार से हैं, सोनम और अनामिका सिंह जी इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं, और भी दोस्त हमारे जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, आपको नाम बताना चाहूँगी। कलानोर से हैं नरेंद्र किरण, नितिन मयंक शर्मा। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं समस्तीपुर बिहार से, सूरज सिंह, अनामिका सिंह। इसी बीच हमारे और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बाटापरा छत्तीसगढ़ से, सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, पानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, दनिश तिवारी, अंकिता जोशी, वेदही जोशी। और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, नाम जुड़ रहे हैं, आपको बताना चाहूँगी। उच्च यूपी से सूरज चुरसिया, सुबोध चुरसिया, सलोनी संजू, लल्ला चुरसिया, शिवा शिवानी चुरसिया जी, पवन कोड, योगेंद्र नायक जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं वो किसना है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों बाहुबली, गीत के बोल है कान्हा सोचा जरा। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। इसी बीच हमारे साथी जुड़ रहे हैं और भी जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूंगी श्रोता साथियों जुड़ रहे हैं हमारे बीच सिद्धार्थ गुणा ने, अर्चना ताई गुणा ने, हीरामन शन ने, प्रेम प्रसिद्धि प्रतिभा गुणा ने जी अमरावती महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं ये। फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से है। अमरावती महाराष्ट्र से है श्याम कीटे, वंदना कीटे, कार्तिक कीटे, भाविका कीटे और समस्त कीटे परिवार सदस्यगण। इसी बीच जुड़ना चाह रहा रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजुनू, रजना, बदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा जी। तो आइए साथियों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं कान्हा सोजा सरा। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की। और अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी, बल्केश्वर कॉलोनी आगरा से। फिल्म का नाम है श्रुता साथियों कृष्ण अवतारम। गीत के बोल हैं श्यामल सांवरे। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं सरिता चौरसिया, सुबोध चौरसिया, अबीर चौरसिया, वीर चौरसिया जी। कानपुर से जुड़ रहे हैं सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया, पीहू और दिया जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। बटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरबिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव जी, विदेही जोशी जी, बेबी हंसिका जोशी जी। खंडवा मध्य प्रदेश से गफार डावर जी। और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूँगी, श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। और इसी बीच श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूँगी, जुड़ना चाह रहे हैं बुलढाणा महाराष्ट्र से मदन चक्रवर्ती जी, शबा अंसारी जी, हर्षदा रामेश्वरी जी, मनोहर भाई बिगरी जी, लाडला जी, चौबे जी, कमलकांत गुप्ता जी, विजय सुरकर जी, अशोक श्याम कुंवर जी, प्रज्ञानंद देवांगन जी, कुलकर्णी जी, चंद जी, हेमलता कुंडकर्ण जी। जोधपुर से जयवीर सिंह अरोड़ा जी, कमल बालूजा, अमल मलिक, गोदर्शन जी, गोदर्शन भारती जी, रामशर विश्वकर्मा, रवि कुमार राहुल, प्रकाश जानवी जी, खलील कुरेशी जी, सुरेश गगनेजा, हसन अब्बासी जी, नारायण इंगले, पीएस नवाड़कर जी, मोहम्मद इशाक और जाकिर मंसूरी जी। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी गंजुटवारा से हैं, शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु अंसारी, कलीम अंसारी जी। और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। साथी जुड़ रहे हैं बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, मुकेश कश्यप, हसन सिद्दकी जी, मोहम्मद फरमान, हर्षिता जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी दोस्त, कमल बालूजा जी, बालूजा जी, मदन गिरी जी और दिनेश वर्मा जी, सतीश मिगलानी, बुब्बल जी, अशोक वर्मा जी, इशद खान, किशन सपकाल जी। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं श्यामल सांवरे। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। और आपको बताना चाहूँगी साथियों कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम आपकी फरमाइश में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को कैसे लगी, इस बारे में आप अपनी राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता ही वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज की सभा से जाने की। आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपनी दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारी आज की सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथ ही श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। आज दिनांक 17 अप्रैल 2026 वार शुक्रवार का दिन है। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज। इसे लेकर आएंगी जागृति भट्ट और हमारी रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 5:30 पर। इसके बाद हम रुक करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:00। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेतीबाड़ी। इसे लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:00। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और अंजलि पारेशर। अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मनीषा पटेल यानी कि मेरे साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद हम सुन सकेंगे कार्यक्रम समस्या समाधान। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:00। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोताओं, इन्हीं नगमों के बाद हम रुक करेंगे गजलों की ओर, सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। तो श्रोता साथियों, यह तो थी आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए अब सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: सदा यही कहते आए कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र? अपने वो होते हैं जो हमें सद्कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दें, और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश, धर्म की हानि, वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाए।
1: आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े। परंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना उन्नति के लिए आवश्यक है। आप माता पिता हैं ना, यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी, मार्ग के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेगी? इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक रहती है।
2: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भयन बोनु, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
4: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
3: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बोन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि पुन, आपरे भाई बहन थकी आपरे अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नो संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपरो ने आपरी अब्बावारी पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति पुन, आपरे भाई बहनो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपरी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपरी पहचान है, हर बूंद नो मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोलो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छांव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है।
3: होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा,
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपने धरती ने जीवन दान आलंगा।
3: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
3: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: साथियों, जहां कर्म में विश्वास, सोच में सकारात्मकता और मन में धैर्य हो, वहां मुश्किल रास्ते भी मंजिल की ओर ले जाते हैं, और यही कान्हा की सीख है।
1: जी हां, आप सभी को वागर रेडियो परिवार की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर,
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: स्वीकार कीजिएगा साथियों हम दोनों का प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कृष्ण की सीख, युवा जीवन की राह, आज के दौर में कान्हा हमें क्या सिखाते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित है उस व्यक्तित्व को जिनकी मुस्कान में अपनापन है, जिनकी बांसुरी में प्रेम है, और जिनकी मित्रता में विश्वास है, और जिनकी वाणी में जीवन को दिशा देने वाला ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण को।
0: बिल्कुल,
1: जन्माष्टमी केवल एक त्योहार नहीं है, ये उस विचार और व्यक्तित्व को याद करने का अवसर है जिसने हजारों वर्षों से लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा दी है।
0: बिल्कुल,
1: श्री कृष्ण का जीवन हमें समझाता है कशिश की परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सही सोच, धैर्य, कर्म और आत्मविश्वास के साथ इंसान अपनी राह बना सकता है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर हमारे युवा साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना कार्यक्रम का दस्तूर है, और आज जैसा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व भी है, तो क्या ना जो शुरुआत का गीत है वो हमारे युवा साथियों को कान्हा से जुड़ा हुआ गीत ही सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कृष्ण के सिख युवा जीवन की राह को लेकर।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, हम जैसा कि जानते हैं कि आज के हमारे युवा साथी अनेक सपनों के बीच जी रहे हैं। जागृति जी, उनके सामने पढ़ाई का दबाव भी है, करियर की चिंता भी है, भविष्य को लेकर असमंजस भी है और रिश्तों को समझने की चुनौती भी है।
1: जी हाँ,
0: साथ ही साथ सोशल मीडिया की दुनिया में खुद को दूसरों से तुलना करने के दबाव भी हैं। ऐसे समय में सवाल ये उठता है कि क्या हजारों साल पहले कही गई कृष्ण की बातें आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है? साथियों, उसका जवाब बिल्कुल हाँ है, क्योंकि समय बदलता है, तकनीक बदलती है, जीवन जीने के तरीके बदलते हैं, लेकिन इंसान की मूल चुनौतियाँ जैसे कि भ्रम, डर, असफलता, निर्णय और अपने लक्ष्य की तलाश आज भी हमारे साथ है।
1: बिल्कुल कशिश, श्री कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक ही कर्म पर ध्यान देना। इसका अर्थ ये नहीं है श्रोता साथियों कि हमें परिणाम की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये है कि परिणाम के डर से अपने प्रयास को कमजोर नहीं होने देना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: आज का युवा अक्सर शुरुआत करने से पहले ही परिणाम के बारे में सोचने लगता है। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, अगर मेरा चयन नहीं हुआ तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मेरी मेहनत का परिणाम मुझे नहीं मिला तो, ये सवाल कई बार कशिश हमारे कदम रोक लेते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, कृष्ण की सिख हमें याद दिलाती है कि हमारा नियंत्रण मुख्य रूप से हमारे प्रयास, हमारी तैयारी और हमारे व्यवहार पर है। इसीलिए युवा को अपने लक्ष्य के लिए ईमानदारी से मेहनत करनी होगी और असफलता को अपनी पहचान नहीं बल्कि सिख का अवसर समझना होगा।
0: जी जी,
1: क्योंकि रास्ते में आने वाली हर ठोकर ये नहीं कहती श्रोताओं कि आप हार गए, कई बार वो सिर्फ ये सिखाती है कि अगला कदम थोड़ा संभल कर रखना है।
0: जी हाँ जागृति जी, साथी दोस्तों, श्री कृष्ण का जीवन चुनौतियों से भरा रहा है, लेकिन हर परिस्थिति में उनका व्यक्तित्व हमें धैर्य और संतुलन की सीख देता है। साथियों,
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि आज के युवाओं के सामने भी अनेक तरह की चुनौतियां हैं। परीक्षा में उम्मीद के अनुसार अंक न आना, नौकरी न मिलना, किसी प्रतियोगिता में असफल होना, दोस्ती में मनमुटाव होना या अपने भविष्य को लेकर भ्रमित होना।
1: बिल्कुल
0: साथियों, ये सभी स्थितियां मन को परेशान आपको कर सकती है। ऐसे समय में हमें तुरंत हार मानने के बजाय स्वयं से ये पूछना चाहिए कि मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूँ।
1: जी हाँ,
0: यह सोच जागृति जी हमें मजबूत बनाएगी। यानी कि साथियों, मुश्किल समय हमेशा के लिए नहीं रहता, इसलिए परेशानी के समय लिया गया कोई भी जल्दबाजी का फैसला पूरी जिंदगी का फैसला नहीं बनना चाहिए। ऐसे में हमारे युवा साथियों को रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करनी चाहिए और फिर ही आगे की राह तय करनी चाहिए।
1: जी हाँ, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि अपने लक्ष्य हमें स्पष्ट रखने होंगे, तभी हमारे जो रास्ते हैं वो हमें आसान लगेंगे। महाभारत के प्रसंगों में श्री कृष्ण बार बार हमें समझाते हैं कशिश कि जीवन में दिशा और उद्देश्य कितना महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल,
1: आज हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा विकल्प है, पढ़ाई क्षेत्र पड़े हैं, करियर के नए रास्ते खुले हैं और डिजिटल दुनिया ने सीखने के अनगिनत अवसर दिए हैं।
0: जी जी,
1: लेकिन विकल्प ज्यादा होने के कारण कई बार युवा उलझ भी जाता है। कभी वो किसी दोस्त को देखकर अपना लक्ष्य बदल देता है, कभी सोशल मीडिया पर किसी सफलता देखकर खुद को पीछे समझने लगता है। यहाँ कृष्ण की सीख हमें अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देती है।
0: बिल्कुल,
1: हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, किसी और की मंजिल देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझिए।
0: जी हाँ जागृति जी, तो इस विषय को लेकर जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से बात कर ही रहे हैं हमारे युवा साथियों से और जान रहे हैं कि आज के समय में गाना हमें क्या सीख देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुन ले।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में और हम बात कर रहे थे कृष्ण की सीख, युवा जीवन की राह, आज के दौर में कान्हा हमें क्या सिखाते हैं को लेकर। तो जैसे कि गीत से पहले हमने जाना था कि कृष्ण की पहली सीख अपने कर्म पर विश्वास रखें, मुश्किल समय में धैर्य रखना भी एक शक्ति है। साथ ही हमने लक्ष्य स्पष्ट हो तो रास्ते आसान होने लगते हैं ये भी जाना था।
1: जी हाँ,
0: इसी में जानते हैं कि किसी और की मंजिल देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझिए श्रोता साथियों। ये आपको तय करना है कि आपकी रुचि क्या है, आपकी क्षमता क्या है और आप समाज के लिए क्या योगदान देना चाहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लक्ष्य आपका अपना होगा तभी उसके लिए की गई मेहनत भी आपको भीतर से संतुष्ट करेगी।
1: बिल्कुल जागृति जी। साथी युवा साथियों, कृष्ण से हम सच्ची मित्रता का अर्थ भी सीख सकते हैं। जैसे कि साथियों, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता भारतीय संस्कृति में मित्रता के सुंदर उदाहरणों में से एक मानी जाती है।
0: बिल्कुल,
1: आज दोस्त बहुत है लेकिन सच्चा दोस्त कौन है ये समझना जरूरी है। दोस्तों, सच्चा मित्र वह नहीं है जो केवल हमारी खुशी में हमारे साथ खड़ा हो। सच्चा मित्र तो वह है जो हमारी गलती पर हमें सही रास्ता दिखाए, कठिन समय में हमारा हौसला बढ़ाए और अपनी सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय खुश हो। युवा जीवन में संगति का बहुत महत्व है जागृति जी, इसलिए दोस्तों का चुनाव सोच समझकर करना है। ऐसी संगति चुननी है साथियों जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, आपकी क्षमताओं पर विश्वास जगाए और आपको गलत रास्ते से दूर रखे।
0: बिल्कुल, इसी के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आज हमारे हाथ में स्मार्टफोन है और हमारी उंगलियों पर पूरी दुनिया की जानकारी मौजूद है। सोशल मीडिया पर हर दिन हमें किसी न किसी सफलता, उपलब्धि और चमकती हुई जिंदगी दिखाई देती है कशिश
1: जी, जी।
0: लेकिन हमें याद रखना होगा दोस्तों कि दूसरों की दिखाई देने वाली जिंदगी और उनकी वास्तविक जिंदगी एक जैसी नहीं होती। कृष्ण जी की सीख हमें अपने भीतर स्थिर रहने की प्रेरणा देती है। दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद से हमें सवाल करना है, क्या मैं कल से आज थोड़ा बेहतर हुआ हूँ? अगर जवाब हाँ है दोस्तों तो यही आपकी प्रगति है। तकनीक का इस्तेमाल ज्ञान, शिक्षा, रचनात्मकता और अवसरों के लिए करें, लेकिन इतना भी नहीं कि स्क्रीन हमारे समय, ध्यान और वास्तविक रिश्तों पर हावी हो जाए।
1: बिल्कुल साथी युवा साथियों, श्री कृष्ण के व्यक्तित्व हमें जीवन के कई रंग दिखाई देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि वे प्रेम और आनंद से जुड़े हुए हैं लेकिन साथ ही ज्ञान, नीति और जिम्मेदारी के भी प्रतीक हैं। युवाओं के लिए इससे एक खूबसूरत सीख निकलती है जागृति जी, और वो है कि जीवन में केवल पढ़ाई या केवल काम ही सब कुछ नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: परिवार के लिए समय चाहिए, दोस्तों के लिए भी समय चाहिए, अपने स्वास्थ्य और रुचियों के लिए भी समय चाहिए और सबसे जरूरी अपने आप को समझने के लिए समय चाहिए। दोस्तों, जीवन में संतुलन होगा तो सफलता का आनंद भी महसूस होगा, इसलिए अपने सपनों के पीछे दौड़िए लेकिन रास्ते में जीवन को महसूस करना आप मत भूलिए।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ कशिश हमारे श्रोता साथियों को हम ये भी कहना चाहेंगे कि कृष्ण हमें नेतृत्व का एक अलग रूप भी सिखाते हैं। एक अच्छा नेता वो नहीं जो हर काम खुद करे, बल्कि वो है जो सही समय पर सही व्यक्ति को सही दिशा दिखा सके।
1: बिल्कुल,
0: आज के युवाओं में नेतृत्व की क्षमता तो बहुत जरूरी है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कार्यस्थल हो या समाज, हर जगह ऐसे युवाओं की जरूरत है जो अपनी बात कहने के साथ साथ दूसरों की बात सुनना भी जानते हो।
1: जी जी,
0: नेतृत्व का अर्थ केवल आगे खड़ा होना नहीं है श्रोताओं, नेतृत्व का अर्थ है जिम्मेदारी लेना, निर्णय लेना और जरूरत पड़ने पर दूसरों का साथ देना।
1: बिल्कुल जागृति जी। साथियों, सफलता को बहुत जल्दी पाने की इच्छा युवाओं में दिखाई देती है, लेकिन वास्तविक सफलता अक्सर धीरे धीरे बनती है।
0: बिल्कुल,
1: किसी परीक्षा में असफलता, किसी प्रतियोगिता में हार या किसी अवसर का हाथ से निकल जाना जीवन का अंत नहीं है। एक असफल परिणाम जागृति जी केवल ये बताता है कि इस बार परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहा।
0: जी हाँ,
1: इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य भी ऐसा ही रहेगा। साथियों, कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर हमारे युवा साथी ये सोच सकते हैं कि मैं परिस्थिति को बदल नहीं सकता तो अपनी तैयारी और दृष्टिकोण को बेहतर जरूर कर सकता हूँ।
0: जी हाँ
1: साथियों, यही सोच धीरे धीरे आत्मविश्वास को मजबूत करती है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। और जन्माष्टमी पर यानी कि आज के दिन हम कान्हा का जन्मोत्सव मनाते हैं, मंदिर सजते हैं, झांकियां सजती है, भजन गूंजते हैं और वातावरण भक्तिमय हो जाता है।
1: जी हाँ,
0: लेकिन श्रोताओं, इस त्योहार की सुंदरता तब और बढ़ जाती है जब हम कृष्ण के जीवन से मिली एक अच्छी सीख को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। अगर हम प्रयास करें कि हम मेहनत करेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहेंगे, असफलता से सीखेंगे, अच्छे मित्र चुनेंगे, दूसरों से बेवजह तुलना नहीं करेंगे, तकनीक का सही उपयोग करेंगे और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखेंगे, तो यही कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की सच्ची कोशिश होगी।
1: बिल्कुल,
0: तो साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से बस यही कहना चाहेंगे कि जब रास्ता कठिन हो तो धैर्य रखिए, जब मन भ्रमित हो तो सही सलाह लीजिए, जब असफलता मिले तो उसे जरूर सीखिए, जब सफलता मिले तो विनम्र रहिए और जब लक्ष्य तय कर ले तो ईमानदारी से अपने कर्म में जुट जाइए।
1: बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों कृष्ण की सीख केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है।
0: बिल्कुल,
1: कृष्ण हमें बताते हैं कि जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होगी, लेकिन उन परिस्थितियों में हमारा दृष्टिकोण कैसा होगा साथियों, ये बहुत ही हद तक हमारे हाथ में है। इसलिए इस जन्माष्टमी अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप परिस्थितियों से नहीं अपनी सोच और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाएंगे।
0: बिल्कुल, तो हम हमारे श्रोता साथियों को ये कहना चाहेंगे कि कान्हा की बांसुरी हमें मुस्कुराना सिखाए, गीता का ज्ञान हमें कर्म करना सिखाए, उनकी मित्रता हमें रिश्तों को निभाना सिखाए और उनका जीवन हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ना सिखाए। क्योंकि जीवन में रास्ते कितने भी कठिन क्यों न कशिश, अगर सोच सकारात्मक हो, कर्म ईमानदार हो और मन में विश्वास हो तो मंजिल तक पहुँचने की उम्मीद हमेशा बनी रहती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से आज युवा साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी हैं, हमने जाना कि किस प्रकार से कृष्णा का जो व्यक्तित्व है वो अलग अलग तरीके से हमारे युवा साथियों को ढेर सारे संदेश देता है और प्रेरणादायक बातें बताता है, और इन्हीं बातों से हमारे युवा साथी हम कह सकते हैं कि प्रेरित हो पाए हैं। तो जैसा कि दोस्तों बातें ढेर सारी हो चुकी हैं, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहेंगे यहाँ पर एक और गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: इसी गीत के साथ साथियों हम विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, रंग बिरंगी थाली सजाएं, बच्चों को हम स्वस्थ बनाएं। हरी सब्जी, पीला फल, दूध दही से मिले बल, स्थानीय भोजन अपनाएं, सेहत का दीप जलाएं। रंग बिरंगी थाली में स्वास्थ्य छिपा है प्यारी थाली में। नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ।

0: बहुत कुछ है जो हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद है।
1: हाँ कमला, लेकिन हम कभी कभी अपने पारंपरिक भोजन को साधारण समझ लेते हैं और बाजार की पैकेजिंग देखकर उसे ज्यादा अच्छा मान लेते हैं।
0: हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन एक और समस्या है। मेरी बेटी जो है ना, वो सब्जियाँ बिल्कुल नहीं खाती।
1: अरे हाँ कमला, ये तो मेरी बेटी भी करती है। मैं पालक बनाती हूँ तो कहती है मुझे हरी चीज नहीं खानी।
0: तो क्या करें? क्या बच्चों को रोज डांट कर खिलाएं?
1: नहीं कमला, शायद डांटने से बच्चा और दूर भागेगा।
0: फिर क्या करें? बच्चों को कैसे खिलाएं?
1: कमला, मैंने एक दिन सब्जियों को बहुत बारीक काट कर पराठे में मिला दिया था। बेटी ने बिना शिकायत के खा लिया।
0: अरे वाह, यानी तरीका बदल कर भी बच्चों को सब्जियां खिलाई जा सकती है।
1: हाँ कमला, कभी पराठे में, कभी दाल में, कभी खिचड़ी में, कभी सब्जियों का चीला बनाकर भी हम बच्चों को खिला सकते हैं।
0: हाँ, लेकिन अगर बच्चा एक सब्जी नहीं खाता तो हम उसे दूसरी सब्जी भी खिला सकते हैं।
1: बिल्कुल कमला, आखिर हर बच्चे की पसंद अलग जो होती है।
0: लेकिन एक बात और है, स्कूल में बच्चे को सुबह कुछ खिलाकर भेजना चाहिए, दोपहर में खाना देना चाहिए, शाम को कुछ देना चाहिए और रात को खाना। इन सभी बातों को कैसे तय करें?
1: हाँ कमला, शायद संतुलन जरूरी है। सिर्फ पेट भरना नहीं, शरीर को अलग अलग पोषक तत्व भी चाहिए।
0: मतलब थाली में सिर्फ चावल या सिर्फ रोटी भर देने से काम नहीं चलेगा?
1: शायद नहीं, साथ में दाल या कोई प्रोटीन वाली चीज, सब्जी, दही जैसी चीजें और उपलब्धता के अनुसार फल भी होने चाहिए।
0: हाँ, अब मुझे रंग बिरंगी थाली की बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है।
1: वो कैसे?
0: जैसे थाली में हरी सब्जी है, पीली दाल है, लाल टमाटर है, कोई मौसमी फल है, रोटी या बाजरा है और दही है, तो थाली अपने आप रंग बिरंगी हो जाएगी, है ना?
1: हाँ कमला, और हर रंग सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि अलग अलग पोषण देने वाली चीजों को शामिल करने का एक आसान तरीका है।
0: हाँ, तो बच्चों की थाली में रोज कुछ कुछ नया अलग अलग खाद्य समूह शामिल करने चाहिए, ऐसा ही ना?
1: हाँ कमला, लेकिन एक बात और सोच रही हूँ।
0: वो क्या?
1: हम माता पिता बच्चों के लिए खाना बनाते समय कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं?
0: कौन सी गलतियाँ?
1: कभी बच्चा खाना नहीं खाता है तो हम कभी उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं।
0: हाँ, ये गलती कभी कभार मुझसे भी होती है।
1: हाँ कमला, कभी बच्चा सब्जी नहीं खाता है तो कहते हैं ठीक है जो खाना है खाओ।
0: और कभी बच्चा थोड़ा ज्यादा खा लेता है तो हम खुश हो जाते हैं, चाहे वो पैकेट वाला खाना ही क्यों ना हो।
1: बिल्कुल कमला, शायद हमें यह देखना चाहिए कि बच्चा क्या खा रहा है, कितना खा रहा है और कितनी विविधता से खा रहा है।
0: हाँ, और एक गलती हम ये भी करते हैं कि बच्चों को अपने स्थानीय भोजन के बारे में बताते ही नहीं है।
1: सही कहा, हमारे घरों में बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, दालें, तिल, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां और मौसमी फल भी उपलब्ध हैं। फिर भी बच्चे इन्हें पहचानते तक नहीं।
0: हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि पौष्टिक भोजन हमेशा महंगा नहीं होता।
1: बिल्कुल कमला, हमारे आसपास मिलने वाला सस्ता स्थानीय और मौसमी भोजन भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है।
0: बिल्कुल, अब मैं घर जाकर अपने बच्चे की थाली देखूंगी।
1: और क्या देखोगी तुम?
0: ये देखूंगी कि उसमें सिर्फ पेट भरने वाला खाना है या अलग अलग खाद्य पदार्थों का संतुलन भी है।
1: और कमला, मैं भी अपने बच्चे को सब्जियां डांट कर नहीं बल्कि नए नए तरीके से खिलाने की कोशिश करूंगी।
0: हाँ, और दूध न पीने पर परेशान होने के बजाय कैल्शियम वाले दूसरे खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी लूंगी।
1: और कमला, महंगे फल के पीछे भागने के बजाय स्थानीय और मौसमी फल चुनूंगी।
0: बिल्कुल, देखो सुनीता, लगता है हमारी थाली सच में एक कहानी कहती है।
1: हाँ कमला, और उस कहानी का नाम ही स्वास्थ्य।
0: अब समझ आया, बच्चों की थाली जितनी विविध और संतुलित होगी उनके स्वस्थ विकास की संभावनाएं उतनी बेहतर होगी।
1: बिल्कुल कमला, चलो आज से ही अपने बच्चों को थाली के रंगों से नहीं पोषण से भी सजाते हैं।
0: बिल्कुल,
2: रंग बिरंगी थाली सजाएं, बच्चों का स्वास्थ्य बनाएं।
3: साथियों, जैसा कि अभी हमने सुना कमला और सुनीता की बातचीत

में कि बच्चों की थाली से जुड़े कितने सारे सवाल हमारे सामने हैं। रंग बिरंगी थाली सिर्फ देखने में सुंदर बनाने की बात नहीं है, इसका उद्देश्य बच्चे के भोजन में विविधता और अलग अलग खाद्य समूहों को शामिल करने की आदत विकसित करना है। लेकिन अब इन सवालों के जवाब हम अनुमान से तो नहीं बल्कि विशेषज्ञ से जानेंगे। आज हमारे साथ कार्यक्रम में विशेषज्ञ अवश्य जुड़ेंगे, लेकिन अभी हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, जैसा कि हमने गीत से पहले हमारी दो महिलाओं के संवाद से जाना कि किस तरीके से कई सारे सवाल जो हैं वो हमारे मन में रहते हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब जो हैं वो हम अनुमान से नहीं जान सकते बल्कि विशेषज्ञ से जानने होंगे। तो आज हमारे कार्यक्रम से विषय विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं जो हमें बताएंगे कि बच्चों की रंग बिरंगी थाली वास्तव में कैसी होनी चाहिए और माता पिता किन बातों का ध्यान रखें। तो सुनते हैं उनकी बातों को। मैम नमस्कार।
1: नमस्कार
0: मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में। जैसा कि मैम आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: मैं नैना जैन महिला एवं बाल विकास विभाग के सीडीपीओ के पद से मैं रिटायर्ड हुई हूँ। 2 साल हुए मुझे रिटायरमेंट हुए।
0: बिल्कुल।
1: और मैं 37 ईयर की मेरी अनुभव रहा है महिला एवं बाल विकास विभाग में।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आपका जो अनुभव है वो महिला एवं बाल विकास में रहा है और हम देख रहे हैं कि सितंबर माह में हम पूरे माह पोषण माह मनाते हैं। तो सबसे पहले तो कार्यक्रम में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रंग बिरंगी थाली क्या होती है और क्या इसका मतलब सिर्फ अलग अलग रंग के खाद्य पदार्थ होना होता है या इसके पीछे पोषण का कोई विशेष उद्देश्य भी है।
1: इसमें क्या है कि पूरा पोषण का विषय होता है। जैसे पहले अपन लोग इजी वे में बताएं तो उनको तिरंगा भोजन बोलते हैं। उसमें क्या पूरी पौष्टिक तत्व उस थाली के अंदर सजाई जाती है जाकि वो अपने बैलेंस डाइट होती है, संतुलित आहार। उसमें हरा सफेद और लाल पीले पदार्थों का अपना मिश्रण होता है उस थाली के अंदर। इसमें जैसे दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, दही है। इस प्रकार से उसको थाली को बैलेंस डाइट को बनाया जाता है जिससे अपने वो सारे पौष्टिक तत्व अपने शरीर के अंदर जाए।
0: बिल्कुल मैम। तो जैसा कि आपने बताया कि खाने को किस तरीके से पौष्टिक बनाया जाता है और हमारी जो थाली होती है उसे तिरंगा आहार हम कह सकते हैं और उस थाली में ये सारी चीजें होनी ही चाहिए। नहीं मैम, अलग अलग रंग के फल और सब्जियों का बच्चों के स्वास्थ्य में क्या महत्व है?
1: अलग अलग सब्जियों का फलों का बच्चों के साथ में ये महत्व है क्योंकि बच्चा नए अपना जब जन्म लेता है उसके बाद में जो बच्चा अपना परिपूर्ण 5 साल की उम्र होती है, जो बच्चे की पूरी डेवलपमेंट की उम्र होती है, उसका मानसिक शारीरिक और बौद्धिक सारा विकास उसका उस समय होता है 5 साल की उम्र में। 80% उसका डेवलपमेंट है ना 5 ईयर की उम्र में होता है। तो उसके लिए बच्चों को उस समय फल सब्जियां वगैरह सब चीजें जो उसकी पौष्टिकता के लिए अपने शरीर को वृद्धि करने के लिए जरूरी है तो वो उसको अपने को उपलब्ध करवानी पड़ती है।
0: बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से अलग प्रकार की फल और सब्जियां बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। यही मैम आप में जानना चाहूंगी कि क्या यही जरूरी है कि बच्चे को सेब, अंगूर, कीवी जैसे महंगे फल ही खिलाए जाए? क्या महंगे फल ही ज्यादा पौष्टिक होते हैं?
1: नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अपने लोकल फूड है, जो लोकल अपने पास उपलब्ध है जैसे केला है, अमरूद है, आम है, सीजन के जो भी फल अपने यहाँ पर अपने खेतों में उगाए जाते हैं, अपने घरों में उगाए जाते हैं, वो भी सारे पौष्टिकता से भरे हुए होते हैं। उसमें अपने को जरूरी नहीं कीवी और इनको मतलब बड़े ज्यादा महंगे फल लाकर उनको बच्चों को दिए जाए।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आप बहुत अच्छी बातें हमें बता रही हैं, तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि हमारे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में मिलने वाले स्थानीय और मौसमी कौन कौन से फल हैं जिन्हें बच्चे के भोजन में हम शामिल कर सकते हैं?
1: जैसे अपने मौसम के अनुसार गर्मियों में अपने आम आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: पका हुआ आम विटामिन ए का पूरा स्रोत होता है। आम है, चीकू है जो घर के अंदर अपन लगाते हैं या खेतों में लगाते हैं, आम, चीकू, पपीता। बच्चों की डाइजेशन के लिए पपीता बहुत अच्छा है, पपीता में भी विटामिन ए होता है।
0: बिल्कुल।
1: अमरूद है, अमरूद में विटामिन सी और ये सब चीजें होती है। नींबू है, नींबू का तो रोज सेवन करना चाहिए, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है। तो जो भी फल अपने यहाँ पे उपलब्ध है, अपन अनार है, अनार भी लगाते हैं लोग घर में।
0: बिल्कुल।
1: तो अनार का भी जूस या अनार के दाने वगैरह मेश करके वो भी अपन बच्चों को दे सकते हैं।
0: बिल्कुल मैम। तो जैसा कि आपने बताया कि स्थानीय स्तर पर कई ऐसे फल हैं जो हम बच्चों के जीवन में शामिल करें ताकि उनका पोषण

0: कि हमें दूध दही गुड़ इन सारी चीजों को रोजाना बच्चों की थाली में काम में लेना चाहिए, जिससे उन्हें संतुलित पोषण मिल सके। इसी के साथ मैम हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे दूध नहीं पीते, तो ऐसे में बच्चे को कैल्शियम कैसे दिया जा सकता है?
1: ऐसे में बच्चों को कैल्शियम देने के लिए हम दूध से बनी हुई वस्तुएं दे सकते हैं उसको, जैसे खीर है, दही है, छाछ है, और कैल्शियम के लिए अपने को सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियों को मैश करके दे सकते हैं। सहजन की जो फली होती है, सहजन की फली और सहजन के पत्ते, वो बहुत ही पौष्टिक तत्व है कैल्शियम के लिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या, सहजन को मतलब यूं माना जाता है कि ठीक है वह होगा, लेकिन सहजन के अंदर सबसे ज्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर वो पत्तियों का भी उपयोग करे, अगर खाने के अंदर जब अगर आटा गूंथे तो उसमें उसकी पत्तियां मैश करके मिला दे, या उसकी फलियों का जूस निकाल के उसके अंदर आटा गूंथ ले, या उसके अंदर भोजन बना ले, तो ये सारी चीजें अगर बच्चों को मिल जाती है तो पूरा प्रोटीन कैल्शियम कम मिल जाता है उसको वहाँ पे।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा कि किस तरीके से हमें अलग तरीके अपनाकर बच्चों को इन सारी चीजों को लेकर प्रेरित करने की जरूरत है। यही हम देखते हैं कि मैम हरी सब्जियां देखते ही बच्चे जो है वो मुंह बनाने लगते हैं, ऐसे में माता पिता उन्हें सब्जी खाने की आदत कैसे डाल सकते हैं?
1: वो माता पिता भी, मेरा यह कहना है कि जब माता पिता अपना भोजन बनाए, जब रखे ना अपनी थाली में, तो उसके साथ में बच्चे की थाली भी परोसे, ताकि बच्चा उसको माता पिता की जो थाली में देखता है ना, वो बच्चा खाने की कोशिश करता है।
0: बिल्कुल।
1: उसको मतलब नई नई, जैसे उसी में अगर अपना गेहूं का, मक्के का, चने का, तीनों का आटा मिक्स करके उसी के अंदर सारी हरी पत्तेदार सब्जियां मिक्स करके दे दी, तो वो भी बच्चा खा लेगा, क्योंकि बच्चे को नई नई वेराइटियों का, उसको चखने का शौक होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो 5-6 दिन तक तो एक जैसा भोजन दिया जाए, फिर 6ठे दिन उसका चेंज करा जाए, परिवर्तन भी करना जरूरी है, कि बच्चों की इच्छा के अनुसार परिवर्तन बहुत जरूरी है। और आजकल जो पाउच वगैरह बच्चे लाल ला के खा रहे हैं, वो बिल्कुल बेकार है, और उससे तो बच्चों के साथ में मतलब पोषण का कुछ भी तत्व नहीं मिलते हैं, उल्टा उसके उसकी बॉडी में रिएक्ट कर रहा है वो चीजें। माता पिता को ये समझाना पड़ेगा कि जो हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध है, और खिचड़ी बनाई जाए तो खिचड़ी तो सबसे ज्यादा लाभदायक है, बूढ़े भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, और हम लोग भी खा सकते हैं। खिचड़ी में आप सारी सब्जियां डाल दो, मूंग की दाल वगैरह, चावल है, मूंग की दाल है, बाकी सारी सब्जियां डाल के एक चम्मच घी भी ले लो, क्योंकि चिकनाई भी जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है। तो ये चीजें अगर खिचड़ी के रूप में भी बना के उनको खिलाई जाए, वो सारी चीजें, कद्दू मिलता है, कद्दू के अंदर कद्दू के पीस करके भी उसमें डाल दो खिचड़ी में।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैम,
1: अपन उसको पहुंचा सकते हैं उसके भोजन के माध्यम से अपन।
0: जी जी मैम, आपने सही कहा कि किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से बच्चों को सब्जियां खाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यही मैम, अगर हम एक दिन की बात करें तो बच्चों को किस तरीके से हम पूरे दिन में संतुलित भोजन दें, जिससे नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम के नाश्ते और रात के भोजन में किस तरह की अलग अलग चीजों को हमें शामिल करना चाहिए?
1: जैसे सुबह नाश्ते में अगर पोहा दे दिया बच्चों को, पोहा भी बहुत पौष्टिक होता है, दूध पोहा है वो बहुत पौष्टिक है, और बच्चा पचा भी लेता है। पोहा क्या होता है कि चावल से जब उसको बनाया जाता है ना, पोहे को बनाने का जो निर्माण किया जाता है, उसमें पूरा कैल्शियम और पोटेशियम, प्रोटीन और विटामिन सारे होते हैं उसमें। तो पोहा के अंदर हरे धने की पत्तियां भी जाती है, थोड़ा बहुत मसाला भी जाता है, बच्चे के लिए मतलब सब चीज उपलब्ध हो सकती है उसमें। चिकनाई के लिए थोड़ा सा तेल या घी का उपयोग कर लिया अपन ने, शुगर या ये गुड़ डाल दिया उसमें, उस पर क्या पोहे का नाश्ता बना ले, कभी मतलब कुछ अनाजों का मिक्स करके कुछ पकौड़ी टाइप बना के बच्चों को दे सकते हैं।
0: जी जी,
1: मतलब जो चाहे तो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा कोई भी नाश्ता बना के उसको पौष्टिक तत्व रूप में अपन दे सकते हैं। दोपहर के खाने के अंदर उसको सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए, मतलब दाल, चावल, रोटी, सब्जी और दही, दही तो होना ही चाहिए थाली के अंदर।
0: इसी के साथ मैम, अब मैं जानना चाहूंगी कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में कई पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं, तो कौन कौन से पारंपरिक खाद्य पदार्थ बच्चों के लिए पौष्टिक हो सकते हैं और हमें उन्हें कैसे भोजन में शामिल करने की जरूरत है?
1: मतलब हमारे जो पारंपरिक त्योहारों पे आप जैसे तिल के लड्डू बनाए, सब्जियों में के अंदर तिल का बहुत उपयोग होता है, तिल के अंदर पूरा कैल्शियम होता है, गुड़ में आयरन होता है। इसी प्रकार से अलग अलग मतलब मिठाइयां वगैरह जो भी बना के अपन पूरे दिन के अंदर अगर बच्चे को पारंपरिक अनाज के अंदर सारे, यहाँ पर देखो चना उपलब्ध है, मक्का उपलब्ध है, गेहूं उपलब्ध है, सोयाबीन उपलब्ध है, सोयाबीन भी प्रोसेस करके उसका छिलका विलका उतार के अगर सारा मिक्सी रोटी का आटा मतलब पिसवा लिया जाए, मोटा आटा और मोटा अनाज अपने यहाँ पर कम पैदा होता है आदिवासी क्षेत्र में, अपने बाजरा और जो नहीं होता है, जबकि अगर बाजरा और जो भी लिया जाए ना तो बहुत बढ़िया पौष्टिक तत्व है कि मोटा अनाज खाना चाहिए। तो जो भी आटा पिसवा है ना वो मिक्स आटा पिसवा ले, उसकी रोटी वैसे भी बनानी है, वैसे ही बनानी, तो मक्का तो खाता ही है, मक्के के साथ में चने का, साबुत चने, काले चने यहाँ पे होते ही है, वो प्रोटीन से भरपेट होते हैं, अंकुरित अनाज जैसे मूंग।

0: करना है, हम कुछ करके भी अपन उसको ले सकते हैं।
1: बिल्कुल मैम।
0: एक दो दिन पहले अपन भिगो दे किसी कपड़े में बांध के रख लो उसको, और दूसरे दिन तीसरे दिन अंकुरित हो जाते हैं, उसको सोख के दे सकते हैं बच्चों को, टमाटर वमाटर सब डाल के उसमें। और एक सबसे बड़ी बात है, अपने यहाँ पे सिंगदाना भी होता है, मतलब मूंगफली, और मूंगफली को भी अगर सेक कर वो काजू और पिस्ते और बादाम से भी ज्यादा पौष्टिक है मूंगफली। मूंगफली को भी मतलब किसी भी प्रकार की वेरायटी बना के बच्चों को दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, परिवार में सब जो भी लोग हैं वो सब उसका सेवन कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चे के भोजन को लेकर माता पिता अक्सर कौन सी गलतियां कर देते हैं जिनसे बच्चों के पोषण पर असर पड़ सकता है।
0: सबसे बड़ी गलती तो यही करते हैं, एक तो हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं खाना बनाते समय, क्योंकि अपना जल भी अपने शरीर के लिए बहुत जरूरी है, शुद्ध जल। जो अपन पौष्टिकता की बात करते हैं तो सबसे पहले जल का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, कि जो भी हम बच्चे को जो जल उपयोग में ले रहे हैं जो खाना बनाने में, हमारे हाथ धोए हुए होने चाहिए, नाखून साफ होने चाहिए, बच्चों को भी जब परोसो तो बच्चे के भी हाथ धुला के उनको भोजन कराने की आदत डालनी चाहिए। और दूसरी चीज है कि भोजन में भी उनको बच्चों को हर चीज को सिखाना चाहिए कि जो भी भोजन उपलब्ध है उसको मतलब किसे बड़े चाव से खाए और चबा चबा के खाए, ये सारी चीजें उनको माता पिता को उसको बतानी पड़ती है। और अपने यहाँ पे यही भूल करते हैं कि अपन को हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, सब्जियों को पहले काटने के बाद धोते हैं, जबकि पहले धो के फिर काटनी चाहिए सब्जियाँ। और रस्सा रस्सा सब फेंक देते हैं, चावल को दालों को अच्छा से धो धो के बिल्कुल उसकी पौष्टिकता खत्म कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज कार्यक्रम में आपने हमें बहुत अच्छी बातों से अवगत करवाया है, तो यही अंत में आप हमारे श्रोता साथी और माता पिता को क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे ताकि वे आज से ही अपने बच्चे की थाली में ज्यादा पौष्टिक और संतुलन बनाने की कोशिश करें?
0: मैं तो सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि एक तो जब बच्चा जन्म लेता है तब तक 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही पर्याप्त है, उसका ऊपर कुछ भी उसको नहीं देना है। 6 महीने से 2 साल तक के बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार जो भी अपने घर में बना हुआ खिचड़ी है, दाल है, दलिया है, उसको मेश करके उसको कटोरी भर भर के, फिर 3रे साल तो उसको जितना जो हमने थाली में खाया वो के वही उसको भी परोस के हमको देना है, और धीरे धीरे उसको खाने की आदत को डालना है। और हम कुछ भी मतलब अच्छे से उसको खाना सेवन करें, क्योंकि हम लोग कमाते किसके लिए, पूरे दिन भर हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारी औरतें भी खेतों में मजदूरी करती है, लेकिन वो अपने खाने पे ध्यान नहीं देती हैं। समय पे उनको जो मिलना चाहिए भूखे के भूखे दौड़ती रहती हैं, जबकि कलेवा की आदत होनी चाहिए, पहले पहले कलेवा की आदत थी मैडम सभी लोगों को, कि कलेवा करके ही कहीं निकलते थे
1: जी जी।
0: और आज क्या है कि वो भूखे भूखे के भूखे निकल जाते हैं, फिर वो दिन भर कमाते हैं लेकिन उसका उपयोग अपने शरीर के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि शरीर ही स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ स्वस्थ है, शरीर भी अगर बीमार हो गया तो फिर सब कुछ बीमार हो जाएगा, क्योंकि पूरा परिवार ही टूट जाता है इलाज कराने में, मेडिसिन में। तो मेरा तो यही कहना है कि किसी भी प्रकार की दवाइयां लेने की हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध है, उसको अच्छे से बना के हम लोग खाएं, और रोज हमारे भोजन के अंदर हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दाल है, चावल है, रोटी है, दही है, मिस्सी रोटी बना के, हर तरह के हलवा बना के, जो भी जम लो जो पसंद आवे उस हिसाब से अपन को लेना है, उसको उपयोग करके और अपने को शरीर को स्वच्छ रखना है।
1: बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छी बात हमारे श्रोता साथियों को कही है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: थैंक यू मैडम, और आपने मेरा सहयोग लिया और मेरे बातों को सुना, और लोगों को भी मेरे संदेश यही देना चाहती हूँ कि जीवन में अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ध्यान रखे, और स्वास्थ्य ही सब कुछ है अपने जीवन में, निरोगी काया सबसे बड़ी माया।
1: बिल्कुल मैम। श्रोताओं, आज की बातचीत से हम यह जरूर समझ गए कि किस तरीके से बच्चों की थाली में विविधता होने की जरूरत है। बच्चे की थाली को सिर्फ पेट भरने का साधन न समझे, बल्कि उसके विकास की पहली पाठशाला समझे। हमारे आसपास उपलब्ध मौसमी फल, हरी सब्जियां, दालें, अनाज, मोटे अनाज, दूध, दही, पारंपरिक खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करके हम बच्चों के भोजन को विविध बना सकते हैं। और हाँ, हर बच्चा हर चीज तुरंत पसंद करे ये जरूरी नहीं, इसलिए खाने को लेकर बच्चों पर दबाव या डांट के बजाय धैर्य, उदाहरण और नए तरीके अपनाना ज्यादा उपयोगी होगा। तो जैसा कि बातें ढेर सारी हो गई है, समय हो चला है विदा लेने का। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोता कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण के कर्म योग से सीखे कर्तव्य ही सच्चा धर्म है। श्रोताओं, धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं, धर्म उस जिम्मेदारी का नाम है जिसे हम ईमानदारी से निभाते हैं।
0: बिल्कुल
1: अंजलि, जब जीवन के रास्ते पर संशय कठिनाई और असमंजस सामने आया तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का संदेश दिया। कर्म से भागना नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना ही जीवन का सच्चा मार्ग है। आज भी श्री कृष्ण का यही संदेश हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो अपने हिस्से का कर्तव्य ईमानदारी से निभाना ही सच्चे धर्म की पहचान है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है श्री कृष्ण के कर्म योग से सीखे करते हुए ही सच्चा धर्म है विषय को लेकर।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, हम देखते हैं कि धर्म केवल पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है।
0: जी हाँ।
1: धर्म वह जिम्मेदारी है जिसे हम ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, जब जीवन में कठिन परिस्थितियां सामने आए और मन दुविधा में पड़ जाए, तब अपने कर्तव्यों से पीछे हटना आसान लगता है। लेकिन श्री कृष्ण का कर्म योग हमें सिखाता है कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। अपने हिस्से का कर्म पूरी निष्ठा से करना चाहिए और यही सच्चे धर्म की पहचान है।
0: बिल्कुल अंजलि, भारतीय संस्कृति ने संसार को जीवन के बहुत सारे महान सिद्धांत दिए हैं। इनमें कर्म योग का स्थान बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, कर्तव्य, धर्म और जीवन के उद्देश्य का जो संदेश दिया, वो केवल एक युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है। ये संदेश आज भी हमारे दैनिक जीवन में उतना ही प्रासंगिक है।
1: बिल्कुल।
0: महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने सामने खड़े संबंधियों, गुरुओं और प्रियजनों को देखकर दुविधा में पड़ गए थे। वे अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस में थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे मन के अनुसार नहीं होती है, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति हमारी निष्ठा हमारे हाथ में होती है। और यही कर्मयोग का सार है, कर्म से भागना नहीं बल्कि अपने उचित कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि हम बात ही कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपने कर्तव्य को निभाने की जरूरत है,
0: बिल्कुल
1: यही बात करें तो श्रोता साथियों, आज के समय में भी मनुष्य अनेक भूमिकाएं निभाता है। विद्यार्थी का कर्तव्य पढ़ाई करना है, शिक्षक का कर्तव्य है ज्ञान देना, किसान का कर्तव्य है अन्न उगाना, माता पिता का बच्चों का पालन पोषण करना और नागरिक का समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना।
0: जी हाँ।
1: जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभाता है, तब परिवार, समाज और राष्ट्र मजबूत बनता है।
0: बिल्कुल अंजलि, सरल शब्दों में कहे तो कर्तव्य को निष्ठा और समर्पण के साथ करना तथा उसके परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता में न उलझना ही कर्मयोग का सरल उपाय है।
1: बिल्कुल।
0: श्री कृष्ण ने कर्म को जीवन का आधार माना। मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता, इसीलिए प्रश्न ये नहीं है श्रोताओं कि हम कर्म करेंगे या नहीं, बल्कि ये है कि हमारा कर्म कैसा होगा।
1: बिल्कुल।
0: अगर कर्म स्वार्थ, अहंकार और लालच से प्रेरित होगा तो उससे अशांति पैदा हो सकती है। लेकिन अगर कर्म ईमानदारी, सेवा, जिम्मेदारी और लोक कल्याण की भावना से किया जाए तो वही कर्म समाज के लिए शक्ति बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: कर्मयोग हमें ये सिखाता है कि हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। सफलता मिले तो अहंकार नहीं और असफलता मिले तो निराश नहीं, दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति अपने कर्तव्य और प्रयास से जुड़ा रहे, यही कर्मयोग अंजलि हमें सिखाता है।
1: जी हाँ जागृति जी, यही अब बात आती है कि कर्तव्य ही सच्चे धर्म की पहचान है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, धर्म को केवल बाहरी आडंबरों से नहीं समझा जा सकता। यदि कोई व्यक्ति पूजा करता है लेकिन अपने परिवार, समाज या कार्य के प्रति जिम्मेदार नहीं है तो उसके आचरण में धर्म की भावना अधूरी रह जाती है।
0: बिल्कुल।
1: सच्चा धर्म हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देना, जरूरतमंद की सहायता करना, माता पिता का सम्मान करना, ईमानदारी से काम करना, प्रकृति की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना और देश के नियमों का पालन करना भी धर्म का ही रूप है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए कहा जा सकता है श्रोता साथियों कि धर्म का सबसे सुंदर रूप कर्तव्य है। जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं, तब हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी बेहतर वातावरण बनाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कर्मयोग को लेकर कि कर्मयोग हमें क्या क्या सिखाता है, ये बातें निरंतर हम करते रहेंगे आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज हम जान रहे हैं श्री कृष्ण के कर्म योग से किस तरीके से हम कर्तव्य की सच्चा धर्म की भावना को सीख सकते हैं, जिसमें जागृति जी हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे थे, यही बात करते हैं परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण है प्रयास को लेकर।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, आज की दुनिया में सफलता बहुत महत्व रखती है हर किसी व्यक्ति के जीवन में। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके प्रयास का परिणाम तुरंत मिले। विद्यार्थी अच्छे अंक चाहते हैं, खिलाड़ी जीतना चाहता है और युवा अपने करियर में जल्दी सफलता पाना चाहता है। लेकिन जागृति जी, हर प्रयास का परिणाम तुरंत हमारे अनुसार नहीं आता।
1: बिल्कुल,
0: कर्मयोग हमें सिखाता है कि परिणाम की चिंता में हमें अपने वर्तमान कर्म को कमजोर नहीं करना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: हमारा वास्तविक अधिकार हमारे प्रयासों पर है। यदि विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ता है तो अपनी गलतियों से सीखता है और लगातार प्रयास करता है।
1: जी हाँ।
0: तो वह केवल जागृति जी परीक्षा के परिणाम के लिए नहीं बल्कि अपने भविष्य के निर्माण के लिए काम कर रहा होता है।
1: बिल्कुल, इसलिए कहा गया है कि श्रेष्ठ कर्म स्वयं में एक उपलब्धि है। और इसी के साथ अंजलि हम बात करते हैं, अर्जुन की दुविधा केवल महाभारत की कहानी नहीं है। आज का मनुष्य भी जीवन के अनेक मोड़ों पर अर्जुन की तरह दुविधा में पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: विद्यार्थी सोचता है कि पढ़ाई कठिन है इसलिए मेहनत क्यों करूं, कर्मचारी सोचता है कि मुझे उचित सम्मान नहीं मिल रहा इसलिए मैं पूरी मेहनत क्यों करूं, नागरिक सोचता है कि जब दूसरे नियम नहीं मानते तो मैं ही क्यों मानूं। यही सोच धीरे धीरे जिम्मेदारी से दूरी पैदा करती है।
0: बिल्कुल,
1: श्री कृष्ण का कर्मयोग हमें याद दिलाता है श्रोताओं कि दूसरे क्या कर रहे हैं ये हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हम अपना कर्तव्य कितनी ईमानदारी से निभाते हैं ये हमारे हाथ में है। इसलिए अपने कर्म को दूसरे के व्यवहार से नहीं जोड़ना चाहिए। साथ ही अगर कर्मयोग का एक महत्वपूर्ण संदेश आपको बताए तो निष्काम कर्म, यानी कि निष्काम कर्म का अर्थ ये नहीं है कि हमें जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रखना है। इसका अर्थ यह है श्रोताओं कि अपने अच्छे कर्म को केवल व्यक्तिगत लाभ से न छोड़े। अंजलि, एक शिक्षक अगर केवल वेतन के लिए नहीं बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाता है तो उसका कर्म और अधिक सार्थक बन जाता है।
0: जी जी।
1: एक किसान केवल अपनी आय के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए अन्न पैदा करता है। एक डॉक्टर केवल अपने पेशे के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा के लिए काम करता है। एक सफाई कर्मी केवल अपना काम पूरा नहीं करता बल्कि समाज को स्वच्छ रखने में योगदान देता है।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं, जब व्यक्ति अपने कर्म में सेवा की भावना छोड़ देता है तब उसका सामान्य काम भी महान बन जाता है।
0: जी हाँ जागृति जी, यही अब बात आती है युवाओं के लिए कर्म योग की सीख की।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, आज का युवा ऊर्जा, प्रतिभा और नए विचारों से भरा हुआ है। उसके सामने अवसर भी है और चुनौतियां भी है। ऐसे समय में कर्मयोग की सीख युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: युवा को यह समझना चाहिए कि सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। निरंतर मेहनत, अनुशासन, सीखने की इच्छा और सही दिशा ही सफलता का मजबूत आधार बनती है। असफलता आने पर प्रयास छोड़ देना कर्मयोग नहीं है। आलोचना होने पर रुक जाना कर्मयोग नहीं है। कठिन परिस्थिति देख कर जिम्मेदारी से भाग जाना भी कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग कहता है कि रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन कर्तव्य से पीछे मत हटो।
1: बिल्कुल,
0: युवाओं को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, अपने कौशल को विकसित करना चाहिए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: यही विद्यार्थियों के कर्तव्य की बात करें तो विद्यार्थी जीवन भविष्य की नींव तैयार करता है। हम कह सकते हैं कि ये जो समय होता है उसमें विद्यार्थी का सबसे बड़ा कर्तव्य है ज्ञान प्राप्त करना।
1: बिल्कुल,
0: पढ़ाई केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं जागृति जी बल्कि जीवन को समझने के लिए होनी चाहिए।
1: जी हाँ।
0: विद्यार्थी को समय का सम्मान करना चाहिए, शिक्षकों और माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अनुशासन बनाए रखना चाहिए और अपनी क्षमता को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: यदि विद्यार्थी आज अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहेगा तो कल वह एक

0: करना भी हमारा ही कर्तव्य है। कई बार अंजलि हम सोचते हैं कि हमारी छोटी सी गलती से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन श्रोताओं समाज लाखों लोगों से मिलकर बनता है। यदि हर व्यक्ति अपनी छोटी जिम्मेदारी निभाए तो बड़े से बड़े बदलाव भी संभव है।
1: बिल्कुल जागृति जी, एक मजबूत राष्ट्र केवल सरकार से नहीं बनता, राष्ट्र की शक्ति उसके जिम्मेदार नागरिकों में होती है।
0: बिल्कुल,
1: देश के प्रति हमारा कर्तव्य है श्रोता साथियों कि हम कानूनों का पालन करें, ईमानदारी से अपना काम करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें और समाज में सद्भाव बनाए रखें। देशभक्ति केवल राष्ट्रीय पर्वों पर दिखाई देने वाली भावना नहीं है, सच्ची देशभक्ति रोजमर्रा के जीवन में जिम्मेदारी निभाने से दिखाई देती है। जो व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी से करता है वह राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देता है।
0: बिल्कुल
1: जागृति जी, आज हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन अधिकारों के साथ कर्तव्यों को समझना भी उतना ही हमारे लिए जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: यदि हम सड़क चाहते हैं तो हमें सड़क पर कचरा नहीं फैलाना है। यदि हम सुरक्षित समाज चाहते हैं तो हमें नियमों का पालन समानता से करना है। यदि हम अच्छी शिक्षा चाहते हैं तो हमें सीखने की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभानी होगी।
0: बिल्कुल।
1: यदि हम देश की प्रगति चाहते हैं तो हमें अपने काम में ईमानदारी और गुणवत्ता लानी होगी। इसलिए अधिकार हमें स्वतंत्रता देते हैं और कर्तव्य उस स्वतंत्रता को जिम्मेदारी देते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, तो कहा गया है कि स्वराज का अर्थ केवल बाहरी शासन से स्वतंत्रता नहीं है। श्रोताओं, सच्चा स्वराज तब मजबूत होता है जब व्यक्ति अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार बनता है।
1: बिल्कुल।
0: अगर नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक है अंजलि, तो समाज की हर छोटी समस्या के लिए भी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
1: जी जी।
0: गांव में लोग मिलकर जल संरक्षण कर सकते हैं, स्वच्छता रख सकते हैं, विद्यालय के विकास में सहयोग दें, स्थानीय संसाधनों की रक्षा करें और ग्राम सभा में सक्रिय भागीदारी निभाएं। ये भी स्वराज की भावना है। स्वराज की असली ताकत जिम्मेदार नागरिक है श्रोताओं, और जिम्मेदार नागरिक वही बनता है जो अपने कर्तव्य को समझता है।
1: जी जी।
0: जीवन में हमेशा अनुकूल परिस्थितियां तो रहती नहीं है, कभी कभी आर्थिक कठिनाई आती है, कभी असफलता मिलती है, कभी आलोचना और कभी अनिश्चितता है। ऐसे समय में श्रोताओं व्यक्ति के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो परिस्थितियों के सामने हार मान ले या अपने कर्म पर विश्वास रखकर आगे बढ़े।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ अंजलि, कर्मयोग दूसरा रास्ता दिखाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कठिनाइयों को नजरअंदाज कर दिया जाए, बल्कि इसका अर्थ ये है दोस्तों कि कठिन परिस्थितियों में भी विवेकपूर्ण प्रयास जारी रखा जाए।
1: बिल्कुल।
0: कहा गया है कि परिस्थितियां हमारे रास्ते को कठिन बना सकती है, लेकिन हमारा कर्म हमारी दिशा तय करता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि कर्म योग तभी सार्थक है जब उसमें ईमानदारी हो।
0: बिल्कुल।
1: छोटा हो या बड़ा, उसे पूरे निष्ठा से करना चाहिए। किसी काम को केवल इसलिए लापरवाही से नहीं करना चाहिए कि कोई हमें देख नहीं रहा। सच्चा चरित्र उस समय सामने आता है श्रोता साथियों, जब व्यक्ति बिना किसी दबाव और बिना किसी निगरानी के सही काम करता
0: है। बिल्कुल।
1: ईमानदारी से किया गया छोटा कर्म भी उस बड़े काम से श्रेष्ठ हो सकता है जिसमें स्वार्थ और दिखावा शामिल हो। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि आज की तेज जीवन शैली में तनाव और चिंता बढ़ती जा रही है। हम अक्सर जागृति जी भविष्य के परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं और वर्तमान कार्य पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। कर्मयोग हमें वर्तमान में सही कर्म करने की प्रेरणा देता है। यदि हम अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दें, अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करें और परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता न करें तो मन अधिक स्थिर रह सकता है।
0: जी हाँ।
1: इस प्रकार कर्मयोग केवल धार्मिक या दार्शनिक विचार नहीं बल्कि संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा भी है।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि कर्मयोग को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो अंत में कुछ बातें रह गई है, वो जरूर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और अंत में गीत से पहले आपसे कहा था कि कुछ छोटी मोटी बातें रहेगी वो आपसे जरूर करेंगे, तो कहना चाहेंगे आपसे कि श्री कृष्ण का कर्म योग हमें जीवन का अत्यंत सरल लेकिन गहरा संदेश देता है। अपने कर्तव्यों से मत भागो,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि सच्चा धर्म वही है जो कर्तव्य में दिखाई दे, सच्चा कर्म वही है जो समाज के काम है और सच्चा स्वराज वही है जहाँ हर नागरिक अपने कर्तव्य को समझ कर निभाए। श्री कृष्ण के कर्मयोग की यही सीख है कि कर्तव्य से पीछे नहीं हटना, कर्म में ईमानदारी रखना और अपने प्रयासों से जीवन को बेहतर बनाना।
1: बिल्कुल,
0: यही कर्तव्य बोध व्यक्ति को मजबूत बनाता है, परिवार को जोड़ता है, समाज को आगे बढ़ाता है, राष्ट्र को सशक्त करता है। कर्म ही हमारी पहचान बने और कर्तव्य ही हमारा सच्चा धर्म बने, यही श्री कृष्ण के कर्मयोग का सार है।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, बातें ढेर सारी हो गई हैं और आशा करते हैं श्रोता साथियों को आज के कार्यक्रम की बातें अवश्य पसंद आई होगी।
0: बिल्कुल,
1: तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्चर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

सेहत नु राज हुं है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या के बारे में जो अक्सर शरीर में चुपचाप बढ़ती रहती है और हमें इसकी जानकारी तब होती है जब ये हमारे हृदय और रक्त वाहिकाओं के लिए खतरा पैदा करने लगती है। आज हम बात करने जा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की। श्रोता साथियों, कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में ये बात आती है कि कोलेस्ट्रॉल यानी कोई बहुत बड़ी बीमारी, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोलेस्ट्रॉल अपने आप में शरीर के लिए पूरी तरह बुरा नहीं है। हमारे शरीर को कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। समस्या मनीषा तब पैदा होती है जब रक्त में कुछ प्रकार का कोलेस्ट्रॉल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। यही कारण है कि इसे कई बार छुपा हुआ शत्रु कहा जाता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लंबे समय तक कोई स्पष्ट लक्षण नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे रक्त वाहिकाओं में वसा जमा होने के कारण बन सकता है और हृदय संबंधित बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं छुपा शत्रु है कोलेस्ट्रॉल को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित खान पान, नियमित शारीरिक गतिविधियाँ, पर्याप्त नींद और अच्छी दिनचर्या है वो बहुत जरूरी है। श्रोता साथियों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अक्सर बुखार, सर्दी, खांसी, पेट दर्द या अन्य श्रोता साथियों दिखाई देने वाली समस्याओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे शरीर में कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं जो लंबे समय तक बिना किसी स्पष्ट संकेत के बनी रहती हैं। जैसा कि श्रोता साथियों, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना एक सामान्य समस्या है। हम देखते हैं अंजलि जी कि कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही बहुत से लोगों को लगता है कि यह तो बहुत खराब बीमारी है। वास्तव में श्रोता साथियों ऐसा नहीं है। शरीर को कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। यह शरीर में कोशिकाओं को बनाने, कुछ हार्मोन तैयार करने और जरूरी प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। समस्या तब पैदा होती है श्रोता साथियों जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा असंतुलित हो जाती है।
1: बिल्कुल मनीषा, यही बात करें कि कोलेस्ट्रॉल आखिर है क्या। तो श्रोता साथियों, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का वसा युक्त पदार्थ है जो हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है। शरीर इसका इस्तेमाल कोशिकाओं को बनाने, कुछ हार्मोन बनाने और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं में करता है।
0: जी हाँ,
1: हमारे शरीर को मनीषा कोलेस्ट्रॉल का एक हिस्सा भोजन से मिलता है और काफी मात्रा में शरीर स्वयं ही बनाता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर संतुलित होना जरूरी है, क्योंकि श्रोता साथियों, रक्त में कोलेस्ट्रॉल को शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुँचाने का काम लिपोप्रोटीन करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इनमें मुख्य रूप से LDL, HDL के बारे में बात की जाती है।
0: जी हाँ,
1: यही बात करें कि कोलेस्ट्रॉल को छुपा शत्रु क्यों कहा जाता है। तो श्रोता साथियों, यह विषय सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि कई बार व्यक्ति बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। वह रोज काम करता है, खेत में जाता है, दुकान चलाता है, घर का काम करता है और उसे कोई खास परेशानी महसूस नहीं होती, लेकिन उसके रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता हुआ हो सकता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल अक्सर अपने आप कोई स्पष्ट संकेत नहीं देता, इसलिए केवल शरीर में कोई दर्द या कमजोर महसूस न होने के आधार पर यह मान लेना सही नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल सामान्य है। जब लंबे समय तक ये सारी चीजें बढ़ी रहती हैं, तो धमनियों में प्लाक बनने की प्रक्रिया जो है वो हो सकती है। इससे रक्त का प्रवाह प्रभावित हो सकता है और हृदय रोग, स्ट्रोक जैसे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकते हैं। इसलिए समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाना बहुत महत्वपूर्ण है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं। इसमें श्रोता साथियों, हमारी जीवन शैली, खान पान, शरीर का वजन, उम्र या श्रोता साथियों परिवार में पहले से चली आ रही समस्या भी हो सकती है। यही अगर बात करें अंजलि जी अस्वस्थ खान पान की, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि आजकल भोजन में तली भुनी चीजें और बहुत अधिक घी या तेल और वसा से युक्त पदार्थ लोग लेते हैं, जिसके कारण अंजलि जी हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का खतरा है वो और भी बढ़ सकता है। यदि श्रोता साथियों ऐसे भोजन का सेवन हम लगातार करते हैं या अधिक मात्रा में किया जाए और साथ ही हम देखते हैं कि संतुलित भोजन और शारीरिक गतिविधियां हैं वो कम हो जाए, तो हम देखते हैं कि रक्त और वसा के स्तर का नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, यही बात करें कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के क्या प्रमुख कारण है, तो हम देखते हैं कि खान पान के कारण शारीरिक गतिविधि की कमी, अधिक वजन और मोटापा, धूम्रपान और तंबाकू, मधुमेह और अस्वस्थ समस्याएं, आनुवंशिक कारणों के कारण हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ जाती है। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम में बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि हमने गीत से पहले ढेर सारी बातों को जाना था, यही अब बात करते हैं कि क्या कोलेस्ट्रॉल केवल बुजुर्गों को होता है। तो श्रोता साथियों, यह भी एक आम भ्रम है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल केवल 50 या 60 वर्ष की उम्र के बाद ही बढ़ता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल किसी भी उम्र में बढ़ सकता है। उम्र बढ़ने के साथ जोखिम बढ़ सकता है, लेकिन खानपान, जीवन शैली और आनुवंशिक कारणों और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के कारण कम उम्र के लोगों में भी समस्या हो सकती है। इसलिए उम्र चाहे कोई भी हो, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ अब बात करें मनीषा कि कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए क्या करें। तो श्रोता साथियों, पहला समाधान है थाली में बदलाव। हमारी थाली ही हमारी सेहत की पहली पाठशाला है। भोजन में सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, फल, सलाद और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ को उचित मात्रा में हमें शामिल करने की जरूरत है। बहुत अधिक तले हुए भोजन, अत्यधिक वसा युक्त खाद्य पदार्थों को रोजमर्रा का हिस्सा न बनाए। जहाँ तक संभव हो, घर के ताजे और संतुलित भोजन को प्राथमिकता दें। इसी के साथ मनीषा, तेल की मात्रा का ध्यान रखें। कई बार हम सोचते हैं कि घर का खाना है तो जितना तेल डालेंगे उतना अच्छा स्वाद आएगा, लेकिन स्वाद के साथ स्वास्थ्य का संतुलन भी जरूरी है। तेल का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करना जरूरी नहीं है, बल्कि कुल मात्रा और भोजन की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना जरूरी है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि रोज थोड़ा सा चलना भी श्रोता साथियों जरूरी है इसकी। हम देखते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए श्रोता साथियों शारीरिक गतिविधियां बहुत महत्वपूर्ण होती है।
0: बिल्कुल।
1: हर व्यक्ति अपनी उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार गतिविधियां कर सकता है, जैसे कि श्रोता साथियों तेज चाल में चलना, हल्का व्यायाम करना, योग करना या रोज की जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो भी आप कर सकते हैं। इससे अंजलि जी हम देखते हैं कि हमारा शरीर है वो सक्रिय रहता है। साथ ही श्रोता साथियों हम देखते हैं कि तनाव और नींद का भी हमें ध्यान रखना है। स्वास्थ्य श्रोता साथियों केवल खान पान तक सीमित नहीं होता है, तनाव और नींद भी हमारी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: बिल्कुल।
1: लगातार तनाव में रहने से और पर्याप्त नींद न लेने से श्रोता साथियों हम देखते हैं कि हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए काम के साथ में आराम, पर्याप्त नींद, परिवार के साथ समय बिताना, सकारात्मक गतिविधियों में शामिल होना और मन को शांत रखने की कोशिश करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: इसी के साथ तंबाकू से दूर रहना है। श्रोता साथियों, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों से दूरी बनाना केवल कोलेस्ट्रॉल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शरीर के लिए जरूरी है। अपने वजन को स्वस्थ सीमा में रखने की कोशिश करें। इसके लिए हमें भूखे रहने के बजाय संतुलित भोजन और नियमित शारीरिक गतिविधियों को अपनाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर के अंदर चल रही समस्या को समय रहते पहचाना जाए। अगर डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल की जांच और अन्य स्वास्थ्य जांच की सलाह दी है तो उसे टाले नहीं। खासकर जिन लोगों को मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा या परिवार में हृदय रोग का इतिहास है, उन्हें अपने डॉक्टर से नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए सलाह लेनी चाहिए। इसी के साथ कुछ लोगों को जीवन शैली में बदलाव के साथ डॉक्टर दवा भी दे सकता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल की दवा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए। किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या इंटरनेट की सलाह पर दवा शुरू या बंद नहीं करनी चाहिए। अगर डॉक्टर ने दवा शुरू की है और बिना सलाह के उसे बंद कर देते हैं हम, तो हमें नुकसान हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए दवा की जरूरत व्यक्ति के कुल हृदय जोखिम और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए पूरी तरह से दुश्मन नहीं है, लेकिन इसका बढ़ा हुआ स्तर हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसकी खास बात श्रोता साथियों यह है कि कई बार यह बिना किसी स्पष्ट लक्षण के शरीर में बढ़ता जाता है। इसी कारण श्रोता साथियों इसे छुपा हुआ शत्रु भी कहा जाता है।
0: जी जी।
1: लेकिन डरने की जरूरत नहीं है साथियों। जागरूकता और सही जीवन शैली के साथ हम अपने स्वास्थ्य की अच्छी तरह देखभाल कर सकते हैं। संतुलित भोजन करें, तली भुनी चीजें हैं उनको कम खाएं, फल और सब्जियों को अपने भोजन का हिस्सा बनाएं, नियमित रूप से सक्रिय रहने के लिए शारीरिक गतिविधियां करें, धूम्रपान से दूर रहें और हमारे शरीर के लिए जो जरूरी गतिविधियां हैं वो हमें करनी है, जिससे अंजलि जी हम देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। और साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य की जांच भी हमें करवाते रहना है।
0: बिल्कुल मनीषा, हमारा शरीर हमें हमेशा स्पष्ट संकेत नहीं देता, इसलिए मुझे तो कोई परेशानी नहीं है कहकर जांच को टालना उचित नहीं है। अपनी थाली में संतुलन लाए, रोजमर्रा की जिंदगी में शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाएं, तंबाकू से दूर रहें, वजन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार समय समय पर आवश्यक जांच कराएं। याद रखिए कि स्वास्थ्य की रक्षा बीमारी आने के बाद नहीं, बीमारी से पहले ही की गई सावधानी से होती है।
1: हाँ।
0: कोलेस्ट्रॉल को दुश्मन समझकर डरने की नहीं बल्कि उसे समझ कर नियंत्रित रखने की जरूरत है।
1: बिल्कुल।
0: आज से एक छोटा सा संकल्प लें कि कम तला हुआ, ज्यादा संतुलित भोजन, कम बैठना, ज्यादा सक्रिय रहना, लापरवाही कम, स्वास्थ्य की जांच ज्यादा, क्योंकि स्वस्थ हृदय केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार के भविष्य के लिए जरूरी है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का।

तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को कैसे लगी, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता ही वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है